0: राज विराज में आप सब प्रत्येक दिन वरिष्ठ छाला यौन रोग तथा सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर रंजू पोखरेल MBBS MD डर्माटोलॉजिस्ट द्वारा जांच इलाज भ रहल अछि।
1: जो एहन कोनो समस्या अछि तो निक आ प्रभावकारी इलाज के लेल अनुभवी डॉक्टर रंजू पोखरेल के क्लिनिक सरिता मेडिकल हॉल में संपर्क करो।
0: याद रखू, सरिता मेडिकल हॉल सरकारी अस्पताल के पश्चिम गेट में।
1: फोन नंबर 9808011978।
2: भौजी बहुत टेंशन में छे, की भ गेल?
3: की हेते देखू ना, केन बॉक्स पलंग खरीद के आनलक जे नोट कसते कसते सब टूट गेल।
2: सुनू, जय श्री हनुमान ट्रेडर्स में बहुत मजबूत बॉक्स पलंग भेटे छे, खरीद के आन लिया आ वही ठाम सब सामान भेटे छे।
3: ओतो की सब तैयार करे छे यो?
2: बॉक्स पलंग, थ्री पीस आ टू पीस दराज, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, कुर्सी, अलना, ड्रेसिंग टेबल, बाघ पंजा सोफा सेट।
3: जी हाँ, शादी विवाह आ ऑफिस के लेल संपूर्ण सामान आधुनिक मशीन से कंप्यूटर के डिजाइन अनुसार फर्नीचर तैयार कैल जाय छे।
2: 5x6 फीट के फुल बुटा के बॉक्स पलंग शादी सेट 35,000 आ 6x7 फीट के शादी सेट बॉक्स पलंग 45,000 में भ जायत। संगे मॉडल किचन खरात कार्विन के व्यवस्था छे। पलाय, फॉर्मेका, रेडीमेड ढोका, हैंडल, हत्था, कांटी, कब्जा, स्प्रिट, चपरा आ शीशा लगायत फर्नीचर के संपूर्ण सामान उपलब्ध।
3: प्रोपराइटर शंभु सुथियार।
2: जय श्री हनुमान ट्रेडर्स, राजविराज 1, कंचनपुर रोड, नहर चौक, चूड़ा मिल के बगल में।
3: मोबाइल
2: 9807040070 आ 9862866270।

0: बाढ़ के मौसम में सतर्क रहू आ सुरक्षित रहू। बाढ़ कोनो बखत आबि सकैत अछि, ताहि प्रतिकार के लेल तैयार रहू।
1: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग DHM द्वारा नेपाल के विभिन्न भाग में औसत से बेसी वर्षा होबाक पूर्वानुमान कयल गेल अछि, जै कारण बाढ़ आ कटान के जोखिम बढ़ सकैत अछि।
0: सतर्क रहि कऽ आवश्यक जानकारी प्राप्त करू आ स्थानीय सूचना सब के पालन करू। अहाँ के सुरक्षा अहीं के जानकारी पर निर्भर अछि।
1: बाढ़ के जोखिम भेला पर ई उपाय सब अपनावल जाओ।
0: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, वडा कार्यालय, स्थानीय सरकार तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण संबंधी जिम्मेवार व्यक्ति सब प्राप्त बाढ़ संबंधी जानकारी आ चेतावनी के ध्यान पूर्वक सुनू आ तही अनुसार उपयुक्त निर्णय लिअ।
1: नजदीक रहल नदी खोला में पानिक बहाव के नियमित रूप में अनुगमन करू। नदी किनार या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में वसवास कर रहल छी तो सुरक्षित आश्रय स्थल या उचगर स्थान में रहू आ सुरक्षित रूप से निकले वाला रास्ता बाट खोजू।
0: सूचना द्वारा चेतावनी जारी भेल तो देर नहीं कर तुरंत सुरक्षित स्थान में जेबाक लेल तैयार रहू।
1: अति आवश्यक सामान जना कि टॉर्च लाइट, मोबाइल फोन, चार्जर, दवाई, सूखा खाए वाला सामान, सफा पीबा वाला पानी, नगद रुपया, नागरिकता, पासपोर्ट लगायत अन्य प्रमाण पत्र सब झटपट झोला में तैयारी अवस्था में राखू। झटपट झोला का घर भीतर जल्दी पहुँचा वाला आ तुरंत लो जा सके वाला स्थान में राखू।
0: अपन संपत्ति के सुरक्षा करू, संभव अछि तो बहुमूल्य सामान आ चौपाया के उचगर स्थान में लो जाओ।
1: दूसरों के मदद करू, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपंगता भेल व्यक्ति सब के आवश्यक सहयोग करू। गर्भवती, सुतकेरी आ स्तनपान करा रहल माई के लेल सुरक्षित वास के व्यवस्था करू। ओ सब के लेल सकभर अलगे आ सुरक्षित चर्पी के प्रबंध करू।
0: विपद के बाद होवा वाला सर्पदंश तथा पानी जन्य संक्रामक रोग के जोखिम रहला सँ सचेत रहू। ई सूचना परिवार, पड़ोसी आ जन समुदाय में जानकारी कराओ।
1: बाढ़ दरवाजा तक आबि जाय ऐसे पहिने तैयार रहू आ आइए से सतर्क भ जाओ।
0: ई संदेश अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र ईसी मोड अंतर्गत के हाईग्रिड परियोजना द्वारा ऑस्ट्रेलियन सरकार आ सबल नेपाल के सहयोग में प्रसारण कयल गेल अछि।
2: चेतावनी सुनू, तुरंत निर्णय लिया आ सुरक्षित रहू।

0: Media Extreme Energy Drink.
1: ये दीदी देह भारी छे आ डाँर पीठ से दुखाइए, कौन उपाय करबे?
2: बहुत पुरान आ अनुभवी छे डॉक्टर दिलीप कुमार सा अपने घर में सेवा दे रहल छे, चलू न ओते जांच करा दे छी।
3: अब अपने भवन राजविराज में गजेंद्र नारायण सिंह सर माथा अंचल अस्पताल में कार्यरत प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप कुमार सा टीचिंग अस्पताल काठमांडू MD
4: प्रसूति आ स्त्री रोग संबंधी संपूर्ण जांच आ इलाज करैत अछि।
3: सेवा आ सुविधा सब
4: बच्चा दानी खसनाई के ऑपरेशन सेवा,
2: गर्भवती महिला जांच,
4: स्त्री रोग,
2: लिकोरिया, महीनावारी गड़बड़ी,
4: पीठ आ डाँर दुखेनाई,
2: पेशाब जलन,
4: मांस बढ़नाई,
2: निसंतान दंपति के परीक्षण,
4: IUI सेवा,
2: वीडियो एक्सरे,
3: आधुनिक लैब के संगे फार्मेसी सेवा उपलब्ध अछि।
2: अवश्य सेवा के मौका देल जाय।
3: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप कुमार सा राजविराज हनुमान नगर रोड साबिक जन स्वास्थ्य ऑफिस से पूरब छिन्नमस्ता अस्पताल के सामने दक्षिण साइड।
2: मोबाइल
3: 9861 77 985 आ 9871 79 133।

0: संस्कृति संदेश भोरुकवा FM 92.8 मेगाहर्ज में हम पंडित राम कुमार शास्त्री अपने विद्वत गण का स्वागत करें उपस्थित छी।
1: रक्षा रक्षा गणाध्यक्ष

विक्रम संवत 2083 साल भाद्र 29 गत्ते ईस्वी सन 14 सितंबर 2026 सोम दिन तदनुसार भाद्र शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि दिनक 7:27 धरि चित्रा नक्षत्र दिनक 3:28 धरि ब्रह्मयोग गर करण चंद्रमा तुला राशि में एक अहोरात्र सूर्योदय 5:52 में सूर्यास्त 6:08 में समय अशुद्ध वर्षा ऋतु उत्तर गोल दक्षिणायन उत्तर काल चतुर्थी चंद्र पूजन चौरचन गणेश चतुर्थी व्रत हरितालिका तीज व्रत बराह अवतार मनवादी उत्तर फल्गुन्याम रवि सूर्य उत्तर फल्गुनी नक्षत्र में स्त्री स्त्री च योग मंडुक वाहन मेघादि वायु वृष्टि योग पश्चिम यात्रा अग्निवासक शुभ मुहूर्त इति शुभम। आदरणीय श्रद्धालु सज्जनवृंद एक कार्यक्रम www.bhorakwaifm.org.np लगा के संसार भर सुन रहा है। चली अब अपना सब प्रवचन के क्रम में तैसा पहले आजुक दिन चतुर्थी चंद्र पूजन चौरचन हरितालिका तीज बराह अवतार संपूर्ण बड़ा शुभ समय दिल गेल है। इस सुवर्ण अवसर पर संपूर्ण आदरणीय श्रद्धालु सज्जनवृंद में दीर्घायु सुस्वास्थ्य कार्य प्रगति के संगे माता बहन लोकनिक में असल सुहाग की हार्दिक मंगल में शुभकामना है। चली अब अपना सब प्रवचन की तरफ। साप्ताहिक कार्यक्रम अंतर्गत प्रत्येक सोम दिन भगवान वेदव्यास जी महाराज विरचित श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करत आब रहा मुदा आजुक दिन चतुर्थी चंद्र चौरचन तीज हरितालिका बड़ा अवतार आए अपने के सूर्य उत्तर फल्गुनी नक्षत्र में सेहो जा रहा नक्षत्र बदल रहा है। तो सबसे बड़ा बात है जो आजुक दिनक जे पूजा दिल गेल तीज जे माता बहन लोकनिक के आस्था के विषय जे महारानी पार्वती भगवान शंकर पति के रूप में प्राप्त हुए दोबारा जे सीधा सबको जान रहा है जे दक्ष प्रजापति के हवन कुंडली में महारानी सती जब भस्म भ गेली जब वो दोबारा हिमाचल के घर में प्रादुर्भूत भेल तो वो तीज व्रत के तहत भगवान शंकर के पूजा के तहत भगवान शंकर पति के रूप में दोबारा प्राप्ति हुए जन्म जन्मांतर तक भगवान शंकर पति के रूप में रहे एक लिए अखंड तपस्या कलकिन जे भावना से अखन अपना सबके समाज में माता बहन या हमरा अहाँ के समाज में जते स्त्रीगण हुए तो पति के असल सुहाग के कामना से और जीवन भर जे पति के पानी ग्रहण जे पति कलकिन है जे पति के साथ लागलों हुनकरे साथ जन्म जन्मांतर तक निर्वाह होत रहे ए उद्देश्य से आजुक दिनक तीज व्रत सब क्यों करे अहाँ सब बढ़िया से ध्यान दे। दोसर है चतुर्थी चंद्र व्रत है तो सबसे पहले तो हम अपने के अपने सब के जे कोनो किसिम के
शंका उपशंका है एकरा हम अंत कह रहलूं। अपने सब निश्चिंत रही, आए तीज और चतुर्थी चंद्र दोनों दिल गेल। हालांकि हम अपने के नेट के माध्यम से सबके जानकारी कराइए रहलूं है बारंबार, कोनो भी व्रत त्योहार किछ होते तो अब अपने सब बहुत सारे व्यक्ति अन्योल में रहे थे जो कखन तीज करब, कखन चुट चंद्र करब, कखन समय है, कौन समय शुभ है। आदरणीय श्रद्धालु सज्जनवृंद से बढ़िया से अपने सब जानकारी ले लें। सबसे पहला बात है जाए अपने के सूर्योदय के बाद, जो सूर्योदय के समय कहलो 6:08 तक, 6:08 के बाद 7:27 तक तृतीया तिथि दिल गेल। आदरणीय श्रद्धालु सज्जनवृंद बढ़िया से सब पर ध्यान दी तो अपने सब तीज करे वाली माता बहन लोकनिक से हमार विनम्र अनुरोध है कि सुबह में 7:27 के भीतर में अपने के तीज के शुभ पूजा दिल गेल, कलश स्थापना कर के शुभ मुहूर्त दिल गेल। अपने सब 7:27 के भीतर में अपने कलश स्थापना कह लेल जा, तत्पश्चात दिन रात तक पूजा आई है, उपवास के बाद तय है, तत्पश्चात रहल चतुर्थी तिथि प्रवेश किया जाए। 7:27 के बाद चतुर्थी तिथि प्रवेश किया जाए ते बाद चतुर्थी प्रारंभ भेल। भारी तालिका तीज व्रत के वास्तविक समय के जनिए गेलों। अब चतुर्थी चंद्र जे अपने के सूर्यास्त भेला के बाद जखनी चंद्र दर्शन भेने प्रारंभ भ जाते तखन से अपने के देखब के शुभ मुहूर्त दिल गेल, इमें कोनो किस्म के शंका नहीं। दोसर रहल है जे सब केओ बुझ रहल है जे कलंकित चंद्रमा का देखा के लेल शंख में फल पुष्प दूध ल के चंद्र अर्घ दिमक चाहिए। ओम अत्रि नेत्रम समुद्भूतम शिरोदात संभव ग्रान अर्घ माया दत्तम रोहिण्या सहित प्रभो इदम दुग्ध अर्घम नमो रोहिणी सहित भाद्र शुक्ल चतुर्थ चंद्राय नमः। एहि तरह व्यक्ति के चंद्रमा के दर्शन और चंद्रमा के अर्घ देना चाहिए। कारण आय के चंद्रमा दर्शन कला से खाली हाथ से दर्शन करेता तो व्यक्ति के विभिन्न किस्म के कार्य के बाधा हो के कलंक लागे के संभावना से रहे। कारण सत्राजीत और प्रसेन के कथा अपने सब सुनने रही प्रवचन के क्रम में कतिवीर कहने हाँ। आदरणीय श्रद्धालु सज्जनवृंद सब पर बढ़िया से ध्यान दिए अपने सब। महाराज सत्राजीत और प्रसेन के तहत जे भगवान सूर्य के द्वारा अपने के समंतक मणि प्राप्त केने छल महाराज सत्राजीत, जे अपने को हुनकर भाई प्रसेन भगवान कृष्ण के सभा में गला में लगा के गला के बाद सबके प्रशंसा बढ़िया रहलन। तत्पश्चात वो सिंह के द्वारा जब छिना गेल गेल भगवान कृष्ण के पर कलंक लग गेल। दोसर बात चंद्रमा स्वयं का कार्य से कलंकित है के चलते आजुक दिनक भादो शुक्ल पक्षक चतुर्थी के चंद्रमा का देखला से व्यक्ति के विभिन्न किस्म के दोष लागे ते हेतु आजुक दिनक चंद्रमा व्यक्ति का फल दही या आनंद मेवा मिष्ठान के साथ देखना चाहिए। तो चतुर्थी चंद्रक जे दर्शन करब तकर अलग मंत्र दिल गेल, वो तो अर्घ देवा वाला मंत्र छल जे अपने सबके बीच कहलों जो ओम अत्रि नेत्रम समुद्भूतम शिरोदारणम संभव ग्रहण अर्घ मया दत्तम रोहिण्या सहित प्रभु इदम दुग्धार्घ्यम नमो रोहिणी सहित भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद्राय नमः। ये तो अपने का अर्घ देवा वाला मंत्र छल। अपने का चतुर्थी चंद्र दर्शन करब जकर मंत्र दिल गेल नमः सिंघा प्रसीन नम वधित सिंह जाम वदा हत सुकुमार कंगमार उदी स्तव दियोशेष मंतक। बढ़िया से ध्यान देव इस तरह का अपने के व्यक्ति के चंद्र दर्शन करना चाहिए। आदरणीय श्रद्धालु सज्जनवृंद तैके बाद व्यक्ति के प्रार्थना करना चाहिए। मृगांग रोहिणीनाथम शंभु श्री श्री भूषण वृद्धो संपूर्णा यातु सौभाग्य प्रतिशतमे
रूपम देहि जम देहि भाग्य भगवान देहि में धर्मान देहि धनम देहि सर्वान कामान प्रदेहि में इस तरह व्यक्ति के निवेदन करना चाहिए। आदरणीय श्रद्धालु सज्जन, धर्म शास्त्र के आधार पर सबसे बड़ी बात है जो अपना सब जे भी क्या रहा हिंदू संस्कृति संरक्षण के लिए ये अपना सबके प्रभु परमात्मा की असीम अनुकंपा से पुनः अपने सबके आज के दिन तीज चतुर्थी ये हार्दिक मंगल में शुभकामना के संग प्रथम चरण पार कर गेलो। तहले जानकारी ली जिला सप्तरी विष्णुपुर गाँव पालिका वार्ड नंबर 1 प्रसाही निवासी श्रीमान हरे राम यादव जी की ममता मई माता लक्ष्मीवती देवी यादव जी के दिवंगत आत्मा के शांति के लेल अही विक्रम संवत 2083 भाद्र 28 गते रवि दिन से लगातार 7 दिन तक गुरुर पुराण प्रारंभ है जो दोपहर के 2 बजे से कार्यक्रम भ रहा है जाहि में हम स्वयं पंडित राम कुमार शास्त्री अपने सबके सेवा के लिए उपस्थित छी। अतः संपूर्ण आदरणीय श्रद्धालु सज्जन से विनम्र अनुरोध है ये ज्ञान यज्ञ रूपी प्रवाहित गंगा में गोता लगा के मानव जीवन धन्य करवा कोशिश करी। चलिए दोसर चरण के नई दी के लोग तहलील किस काल भगवत भजन श्रवण करी भगवत नाम संकीर्तन श्रवण करी तत्पश्चात ज्योतिषी निर्णय के आधार पर आजुक भविष्यवाणी श्रवण कराल जात राशि फल श्रवण कराल जात।

0: आदरणीय श्रद्धालु सज्जनवृंद, अब हम सब ज्योतिषी निर्णय के आधार पर आजुक भविष्यवाणी श्रवण करी। चली राशि फल पर। मेघ राशि। मेघ राशि के लिए हर तरह का आनंद है। आजुक दिन अपने जे भी कार्य करब संपूर्ण कार्य में पूर्ण सफलता के प्राप्ति करब। कोई किस्म के दिक्कत नहीं दिल गेल। निर्भीक रूप से कार्य कल जा। समय शुभ रहत। वृक राशि। वृक राशि के लिए हर तरह का आनंद है। आजुक दिन अपने जे भी कार्य करब संपूर्ण कार्य में पूर्ण सफलता के प्राप्ति करब। समय उत्तम रहत। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए आंशिक सफलता दिल गेल। आजुक दिन अपने जे भी कार्य करब संपूर्ण कार्य में पूर्ण सफलता के प्राप्ति करब संभव नहीं, मुदा आंशिक रूप से अपने सफल रहब। समय मध्यम रहत। कर्कट राशि। कर्कट राशि के लिए आर्थिक रूप से लाभ दिल गेल। प्रियजन से मुलाकात दिल गेल। भोजन संतोषजनक रहत। शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति दिल गेल। व्यापार में प्रगति देखल जा रहल है। यात्रा शुभ दिल गेल। समय नीमन रहत। सिंह राशि। सिंह राशि के लिए हर तरह का आनंद है। आजुक दिन अपने जे भी कार्य करब संपूर्ण कार्य में पूर्ण सफलता के प्राप्ति करब। कोई किस्म के दिक्कत नहीं दिल गेल। निर्भीक रूप से कार्य कल जा। समय अनुकूल रहत। कन्या राशि। कन्या राशि के लिए हर तरह का आनंद है। आजुक दिन अपने जे भी कार्य करब संपूर्ण कार्य में पूर्ण सफलता के प्राप्ति करब। कोई किस्म के दिक्कत नहीं दिल गेल। निर्भीक रूप से कार्य कल जा। समय नीमन रहत। तुला राशि। तुला राशि के लिए आर्थिक रूप से लाभ दिल गेल। प्रियजन से मुलाकात दिल गेल। भोजन संतोषजनक रहत। शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति दिल गेल। व्यापार में प्रगति देखल जा रहल है। यात्रा शुभ दिल गेल। समय बढ़िया रहत। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए आर्थिक लाभ, स्वजन से मुलाकात, मेवा मिष्ठान भोजन, सामाजिक प्रतिष्ठा, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति, व्यापार में प्रगति, राजनीतिक सफलता, शुभ यात्रा के योग दिल गेल। समय बढ़िया रहत। धनु राशि। धनु राशि के लिए हर तरह का आनंद है। आजुक दिन अपने जे भी कार्य करब संपूर्ण कार्य में पूर्ण सफलता के प्राप्ति करब। कोई किस्म के दिक्कत नहीं दिल गेल। निर्भीक रूप से कार्य कल जा। समय उत्तम रहत। मकर राशि। मकर राशि के लिए आर्थिक रूप से लाभ दिल गेल। प्रियजन से मुलाकात दिल गेल। भोजन संतोषजनक रहत। शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति दिल गेल। व्यापार में प्रगति देखल जा रहल है। यात्रा शुभ दिल गेल। समय उत्तम रहत। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए हर तरह का आनंद है। आजुक दिन अपने जे भी कार्य करब संपूर्ण कार्य में पूर्ण सफलता के प्राप्ति करब। कोई किस्म के दिक्कत नहीं दिल गेल, मुदा पारिवारिक अंतर्द्वंद के चलते मन अशांत रहत। समय मध्यम रहत। मीन राशि। अंतिम राशि के लिए आर्थिक लाभ, स्वजन से मुलाकात, मेवा मिष्ठान भोजन, सामाजिक प्रतिष्ठा, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति, व्यापार में प्रगति, राजनीतिक सफलता, शुभ यात्रा के योग दिल गेल। समय बढ़िया रहत। आदरणीय श्रद्धालु श्रोता लोकन, अपने सब आस्था और विश्वास के साथ श्रद्धा पूर्वक देश या विदेश में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कथा अमृतक रसास्वादन सहित लोक परलोक कल्याणक लेल समर्पित रहलहुँ तहि हेतु अपने सभक संगे प्राविधिक प्रिय मित्र अमित कुमार झा जी के साधुवाद दैत चराचर संपूर्ण जीवक कल्याणक कामना करैत हम पंडित राम कुमार शास्त्री संस्कृति संदेशक आजुक कार्यक्रम सँ विदा भ रहलहुँ। पुनः काल निर्धारित समय में अपने सभक सेवा के लेल भगवानक असीम कृपा सँ जरूर उपस्थित रहब। प्रणाम, धन्यवाद।
1: कतेक दर्द करै छे, ठेहुन भीने आ नस फूल जाय छे।
2: की भ गेला से?
1: ओ बुआ, नस फूल गेले आ ठेहुन के जोर से दर्द करै छे।
3: आप चिंता नहीं कर, चलो मंडल जी के क्लिनिक राजविराज में
2: डॉक्टर रिधिनाथ प्रसाद मंडल से जांच करा दे छियो।
4: एरो आ हमारे डाल का नस बड़ दुखाइया बारे, ठीक भ जतै न?
2: पूरे ठीक बाजते।
5: जी हाँ, हार जोड़नी तथा नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिधिनाथ प्रसाद मंडल MBBS MS।
6: हर प्रकारक टूटल हड्डी जोड़नाए प्लास्टर ऑपरेशन आ नस रोग संबंधी जांच आ इलाज करैत अछि। संपर्क कैल जाए
5: हार जोड़नी तथा नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिधिनाथ प्रसाद मंडल नर्मदा अर्थो केयर सेंटर राजविराज नेता चौक दक्षिण हीरा फार्मेसी।
6: मोबाइल 9847996749 आ 9817930096। आब अपने निवास सप्तरी सेवा आश्रम वेटनरी अस्पताल सब पश्चिम 24 घंटा लैब आ फार्मेसी सुविधा के साथ सेवा दर आल।
7: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
6: नीम करोली बाबा के जीवनी पर आधारित आ 175 करोड़ सँ बेसी के कारोबार विश्व भर में करो में सफल फिल्म हनुमान अंश शिव शंकर सिनेमा राजविराज में चल रहा है। फिल्म हनुमान अंश,
8: हिंदी फिल्म हनुमान अंश, सब परिवार आप देखू आ बाबा नीम करोली के जीवनी से प्रेरित हो फिल्म हनुमान अंश।
6: एखन भोरकवा FM में भोर के 7 बाजल।
9: अखन अपने साथ रहिची भोरकवा FM।
6: राजविराज में आप सब प्रत्येक दिन वरिष्ठ छाला यौन रोग तथा सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर रंजू पोखरेल MBBS MD डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा जांच इलाज भ रहल अछि।
10: जो एहन कोनो समस्या अछि त नीक आ प्रभावकारी इलाज के लेल अनुभवी डॉक्टर रंजू पोखरेल के क्लिनिक सरिता मेडिकल हॉल में संपर्क करू।
6: याद राखू, सरिता मेडिकल हॉल सरकारी अस्पताल के पश्चिम गेट में।
10: फोन नंबर 9807111978।
11: ये कनिया अहाँ के गहना बड़ा सुंदर या डिजाइनो नया कत बने लिए?
12: ये काव्या ज्वेलर्स राजविराज में बने लिए। आधुनिक डिजाइन का सोना चांदी का गर गहना ऑर्डर बमोजिम का गहना गारंटी के साथ बनबई छी आ नवग्रह का पत्थर सेहो भेटे छै।
13: काव्या ज्वेलर्स राजविराज 7 मेन रोड अदालत के पूर्व, प्रोप्राइटर सोनी कुमारी साह आ सुनील साह। मोबाइल 9817940445।
14: फिरता फिरता 20% समक्या सुफिरता सहले पानी चाहा पानी
15: क्या सुफिरता लिनु भएता
16: एनसेल पैक किन्नु भएता जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिर्ता एनसेल एप मा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल पैक किन्नु भएता शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

0: Media Extreme Energy Drink.
1: এখন আপনি সব শুন রহল ছি ভরতবা FM 92.8 MHz.
2: अरे भाई जल्दी चलो, बस निकल जाएगी. अरे भाई क्या हुआ, बस निकल जाए.

0: लो ये कंबल लो, बहुत सर्दी है।
1: अरे लो ना, कंबल से भी कोई सिद्ध है।
2: और तुम?
1: अरे अपना क्या, हम तो सिपाही हैं सिपाही, कोई शक? अपनी फिक्र करो और मेरी फिक्र छोड़ो। अरे लो, नहीं तो सर्दी में मर जाओगी।
2: मर ही जाऊंगी ना, मुझे रोने वाला कौन बैठा है?
1: कल तक कोई नहीं था, लेकिन अब है, कोई शक?

0: भएका कुपनहरू हल्का प्लस रमाइलोलाई मिलाउनुहोस् र प्राप्त गर्नुहोस् एक प्याकेट मामा चाउचाउ सित्तैमा।
1: मामासँग हल्का रमाइलो।
2: अहाँको गहना बडा सुन्दर या डिजाइनो नयाँ कता बनेलिए?
3: ये काव्या ज्वेलर्स राजविराजमा बनेलिए। ओत आधुनिक डिजाइनका सोना चाँदीका गर गहना अर्डर बमोजिमका गहना ग्यारेन्टीका साथ बनबै छी आ नवग्रहका पत्थर सेहो भेटै छै।
4: काव्या ज्वेलर्स राजविराज साथ मेन रोड अदालत के पूर्व प्रोप्राइटर सोनी कुमारी साह आ सुनील साह। मोबाइल 98-97-40-445।
5: सम्पूर्ण सुविधा सह सम्पन्न युनिक अस्पताल रायपुर रुपनी आ युनिक सिटी अस्पताल राजविराज।
6: अब बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान वीर अस्पताल काठमाण्डू एम्स अस्पताल दिल्ली के दक्ष एवं अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर सब द्वारा हर प्रकारक रोग के जांच आ इलाज करैत अछि।
5: एहिठाम महिला स्त्री एवं प्रसूति पुरुष आ बाल रोग संबंधी जांच आ इलाज करैत अछि।
2: सेवा आ सुविधा सब
6: 24 घंटा इमरजेंसी आ एम्बुलेंस सेवा ओपीडी मेडिसिन सेवा

0: तो बाहर नहीं जा पड़तो।
1: जी हाँ, अली कम्युनिकेशन
2: एहिठाम विदेश जेबाक लेल श्रम स्वीकृति के काम, देश विदेश के लेल हवाई टिकट बुकिंग आ टिकट के डेट चेंज, भारत के लेल रेलवे टिकट बुकिंग,
1: विदेश जेबाक लेल ओरिएंटेशन कक्षा, मेडिकल जांच, कतार आ दुबई के लेल विजिट वीजा एवं विदेश में चिट्ठी पत्र पठेबाक लेल कुरियर सेवा उपलब्ध अछि।
2: नया पासपोर्ट बनेबाक लेल ऑनलाइन केनाइ आ विदेश जाय वालाक लेल राष्ट्रीय परिचय पत्र के फ्री ऑनलाइन फॉर्म भरनाय के संगे हरेक कंपनी के मोबाइल थोक दर में बिक्री आ मरम्मत करैत अछि।
1: संपर्क
2: अली कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल्स, चतुर्भुज मार्केट, मेन रोड, लोहार गली, राजविराज 4, सप्तरी।
1: फोन
2: 031 532 575,
1: मोबाइल
2: 9801500।

0: नीम करोली बाबा के जीवनी पर आधारित आ 175 करोड़ सँ बेसी के कारोबार विश्व भरि मे करो मे सफल फिल्म हनुमान अंश शिव शंकर सिनेमा राज विराज मे चल रहल अछि। फिल्म हनुमान अंश,
1: हिंदी फिल्म हनुमान अंश, सब परिवार आबि देखू आ बाबा नीम करोली के जीवनी सँ प्रेरित हो फिल्म हनुमान अंश।
2: अपने साथ रहल छी बोरकबा।

0: भौजी बहुत टेंशन में छे, की भ गेल?
1: की हेते देखू ना, केन बॉक्स पलंग खरीद के आनलक है जे नोट कसते कसते सब टूट गेल।
0: सुनू, जय श्री हनुमान ट्रेडर्स में बहुत मजबूत बॉक्स पलंग भेटे छे, खरीद के आन लिया, वही ठाम सब सामान भेटे छे।
1: ओतो की सब तैयार करे छे यो?
0: बॉक्स पलंग, थ्री पीस आ टू पीस दराज, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, कुर्सी, अलना, ड्रेसिंग टेबल, बाघ पंजा सोफा सेट।
2: जी हाँ, शादी विवाह आ ऑफिस के लेल संपूर्ण सामान आधुनिक मशीन से कंप्यूटर के डिजाइन अनुसार फर्नीचर तैयार कैल जाय छे।
0: 5x6 फीट के फुल बुटा के बॉक्स पलंग शादी सेट 35,000 आ 6x7 फीट के शादी सेट बॉक्स पलंग 45,000 में भ जायत। संगे मॉडल किचन खराज कार्विन के व्यवस्था छे, पलाई फर्मिका रेडीमेड ढोका हैंडल हत्था कांटी कब्जा स्प्रिट चपरा आ शीशा लगात फर्नीचर के संपूर्ण सामान उपलब्ध।
2: प्रोपराइटर शंभु सुतिहार।
0: जय श्री हनुमान ट्रेडर्स, राजविराज 1 कंचनपुर रोड नहर चौक चूड़ा मिल के बगल में।
2: मोबाइल
0: 9807040070 आ 9868-66-270।
3: फिरता 20%
4: एनसेल पैक किन्नु भयो त? जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिर्ता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल पैक किन्नु भयो त? शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

0: नवरत्न कुल ओइलको 2 मिनेटको मालिस लिएर छ तपाईँलाई कुल दिलाउँछ गर्मी टाउको दुखाइ थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम नवरत्न वर्ल्ड नम्बर 1 कुल ओइल चिसो चिसो कुल कुल
1: कतेक दर्द करै छै ठेहुन भीने आ नस फुलि जाइ छै
2: की भ गेला से
1: ओ बुआ नस फुलि गेलै आ ठेहुन के जोर से दर्द करै छै
3: आप चिंता नहीं कर चलो मंडल जी के क्लिनिक राजविराज में
2: डॉक्टर रिद्धिनाथ प्रसाद मंडल से जांच करा दे छियै
4: रो आ हमारे डाढ़ का नस बड़ दुखाइया बारे ठीक भ जतै न
2: पूरे ठीक भ जतै
5: जी हाँ हार जोड़नी तथा नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिद्धिनाथ प्रसाद मंडल MBBS MS
6: हर प्रकारक टूटल हड्डी जोड़नाए प्लास्टर ऑपरेशन आ नस रोग संबंधी जांच आ इलाज करैत अछि संपर्क कैल जाए
5: हार जोड़नी तथा नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिद्धिनाथ प्रसाद मंडल नर्मदा अर्थो केयर सेंटर राजविराज नेता चौक दक्षिण हीरा फार्मेसी
6: मोबाइल 9847996749 आ 9817930096 आप अपने निवास सप्तरी सेवा आश्रम वेटनरी अस्पताल सब पश्चिम 2400 घंटा लैब आ फार्मेसी सुविधा के साथ सेवा दर आल अछि।

0: Mania?
1: Extreme energy drink.
2: 에컨 업네 섭신 전체 부르크바 FM 92.8 MHz.

0: এখন ভড়কওয়া এফএম ভোরকে আট বাজল। राज विराज में आप सब प्रत्येक दिन वरिष्ठ छाला यौन रोग तथा सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर रंजू पोखरेल MBBS MD डर्माटोलॉजिस्ट द्वारा जांच इलाज भ रहल अछि।
1: जो एहन कोनो समस्या अछि त निक आ प्रभावकारी इलाज के लेल अनुभवी डॉक्टर रंजू पोखरेल के क्लिनिक सरिता मेडिकल हॉल में संपर्क करू।
0: याद राखू, सरिता मेडिकल हॉल सरकारी अस्पताल के पश्चिम गेट में।
1: फोन नंबर 9800711978।
2: एनसेल पैक किन्नु भयो त सर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।
1: अपाङ्गता भेल व्यक्ति, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक आ बिरामी के विशेष ध्यान देबाक चाही।
2: आइ काल्हि अत्यधिक गर्मी आ गरम हवा चलो वाला समय अछि, ताहि एहन अवस्था में जर एनाय, उल्टी जकाँ लगनाय, थकान लगनाय, बेसी प्यास लगनाय, धड़कन बढ़नाय, श्वास प्रश्वास में समस्या भेनाय, अत्यधिक माथ दुखेनाय, बेहोश भेनाय, मांसपेशी सब दुखेनाय, उल्टी भेनाय जेहन समस्या सब देखल जा सकत अछि।
1: गरम हवा के प्रभाव तथा लू लागत से बचे वाला उपाय सब,
2: जूस शरबत आदि प्रशस्त मात्रा में पियल जाओ,
1: दिन भर प्रशस्त पानी आ झोर वाला चीज सब सेवन कैल जाए,
2: हल्का ढीला आ सूती के कपड़ा सब लगावल जाए,
1: संभवतः ठंडा स्थान में बैसल जाए,
2: दोपहर के समय में अनावश्यक घर से बाहर नहीं जाओ,
1: बाहर जाइए पर छाता टोपी चश्मा आ पंजा प्रयोग कैल जाए,
2: खाली पेट बाहर नहीं जाओ,
1: दोपहर के समय में कड़ा शारीरिक परिश्रम नहीं कैल जाए,
2: स्वास्थ्य संबंधी कोनो प्रकार के समस्या देखल जाए तब स्वास्थ्य कर्मी संग नियमित संपर्क में रह अनुरोध कैल जाए। सबल नेपाल आ समावेशी अपांग संग सप्तरीक साझेदारी तथा CBM ग्लोबल के सहयोग में संचालित अपांगता समावेशी विपद जोखिम न्यूनीकरण परियोजना द्वारा जनहित में जारी संदेश।
3: एखन अपने सब सुन रहल छी भोरकवा FM 92.8 MHz।

0: 500 प्याकेट भित्र रहेका कुपनहरू हल्का प्लस रमाइलोलाई मिलाउनुहोस् र प्राप्त गर्नुहोस् एक प्याकेट मामा चाउचाउ सित्तैमा।
1: मामासँग हल्का रमाइलो।
2: ये दिदी देह भारी छे आ डाँर पीठ से दुखाइए, कोन उपाय करबै?
3: बहुत पुरान आ अनुभवी छे डॉक्टर दिलीप कुमार सा अपने घर में सेवा दे रहल छे, चलू न ओते जांच करा दे छी।
4: अब अपने भवन राजविराज में गजेंद्र नारायण सिंह सर माथा अंचल अस्पताल में कार्यरत प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप कुमार साह टीचिंग अस्पताल काठमांडू MD
3: प्रसूति आ स्त्री रोग संबंधी संपूर्ण जांच आ इलाज करैत अछि।
4: सेवा आ सुविधा सब
3: बच्चादानी खसनाई के ऑपरेशन सेवा,
5: गर्भवती महिला जांच,
3: स्त्री रोग,
5: लिकोरिया,
3: महीनावारी गड़बड़ी,
5: पीठ
3: आ डाँर दुखेनाय,
5: पेशाब जलन,
3: मांस बढ़नाय,
5: निसंतान दंपति के परीक्षण,
3: IUI सेवा,
5: वीडियो एक्सरे,
4: आधुनिक लैब के संगे फार्मेसी सेवा उपलब्ध
5: अवश्य सेवा के मौका देल जाए।
4: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप कुमार साह राजविराज हनुमान नगर रोड साबिक जन स्वास्थ्य ऑफिस से पूरब छिन्नमस्ता अस्पताल के सामने दक्षिण साइड।
5: मोबाइल
4: 9861 77985 आ 9817 89133।

0: extreme energy drink.
1: ये सुनो
2: की कहे छे
1: हम जाय छी तिरुपति ट्रेडर्स में वही ठाम सीजन अनुसार के सब ब्यू विजन भेटे छे खरीद लेबे आ चलि अबे
2: एकटा रोटावेटर के ऑर्डर सेहो दे देबे
1: हेते
3: तिरुपति ट्रेडर्स राज विराज
4: जी हाँ एहिठाम विभिन्न प्रकारक औद्योगिक मशीन उचित दाम में उपलब्ध है
2: चप्पल बनावे वाला मशीन
4: मुर्गा दाना बनावे वाला मशीन आ माछ उत्पादन के लेल कृषि औजार सामान सब
2: पावर ट्रेलर
4: थ्रेसर
2: रोटावेटर
4: कम्पाइंड धान आ गहूँ काटे वाला मशीन
2: रोपे वाला मशीन
4: स्प्रे मिल सेट जेनरेटर
2: कृषि औजार स्पेयर पार्ट्स
4: आ बोरिंग सामान संगे घर निर्माण आ हार्डवेयर संबंधी संपूर्ण सामान उपलब्ध है
3: तिरुपति ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स कंचनपुर रोड राजविराज 8
4: प्रोप्राइटर अशोक कुमार यादव
2: मोबाइल
4: 9807788897 आ 9847452178
5: अखन अपने साथ रहिए बोलकबा एफएम

0: एखन भोरकवा एफएम में दिन के 9 बाजल। बाढ़ के मौसम में सतर्क रहू आ सुरक्षित रहू। बाढ़ कोनो बखत आब सकत अछि, ताय प्रतिकार के लेल तैयार रहू।
1: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग DHM द्वारा नेपाल के विभिन्न भाग में औसत से बेसी वर्षा होबाक पूर्वानुमान कयल गेल अछि, जै कारण बाढ़ आ कटान के जोखिम बढ़ सकत अछि।
0: सतर्क रह कर आवश्यक जानकारी प्राप्त करू आ स्थानीय सूचना सब के पालन करू। अहाँ के सुरक्षा अही के जानकारी पर निर्भर अछि।
1: बाढ़ के जोखिम भेला पर ई उपाय सब अपनावल जाओ।
0: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, वडा कार्यालय, स्थानीय सरकार तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण संबंधी जिम्मेवार व्यक्ति सँ प्राप्त बाढ़ संबंधी जानकारी आ चेतावनी के ध्यान पूर्वक सुनू आ तही अनुसार उपयुक्त निर्णय लिय।
1: नजदीक रहल नदी खोला में पानिक बहाव के नियमित रूप में अनुगमन करू। नदी किनार या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में वसवास कर रहल छी त सुरक्षित आश्रय स्थल या उच्चगर स्थान में रहू आ सुरक्षित रूप से निकले वाला रास्ता बाट खोजू।
0: सूचना द्वारा चेतावनी जारी भेल त देर नहीं कर तुरंत सुरक्षित स्थान में जेबाक लेल तैयार रहू।
1: अति आवश्यक सामान जना कि टॉर्च लाइट, मोबाइल फोन, चार्जर, दवाई, सूखा खाय वाला सामान, सफा पीबा वाला पानी, नगद रुपया, नागरिकता, पासपोर्ट लगायत अन्य प्रमाण पत्र सब झटपट झोला में तैयारी अवस्था में राखू। झटपट झोला का घर भीतर जल्दी पहुँचा वाला आ तुरंत लौ जा सके वाला स्थान में राखू।
0: अपन संपत्ति के सुरक्षा करू, संभव अछि त बहुमूल्य सामान आ चौपाया के उच्चगर स्थान में लौ जाओ।
1: दोसरों के मदद करू, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपंगता भेल व्यक्ति सब के आवश्यक सहयोग करू। गर्भवती, सुतकेरी आ स्तनपान करा रहल माय के लेल सुरक्षित वास के व्यवस्था करू। ओ सब के लेल सकभर अलगे आ सुरक्षित चर्पी के प्रबंध करू।
0: विपद के बाद होवा वाला सर्पदंश तथा पानी जन्य संक्रामक रोग के जोखिम रहला सँ सचेत रहू। ई सूचना परिवार, पड़ोसी आ जन समुदाय में जानकारी कराओ।
1: बाढ़ दरवाजा तक आबि जाए ऐसे पहिने तैयार रहू आ आइए से सतर्क भ जाओ।
0: ई संदेश अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र ईसी मोड अंतर्गत के हाईग्रिड परियोजना द्वारा ऑस्ट्रेलियन सरकार आ सबल नेपाल के सहयोग में प्रसारण कयल गेल अछि।
2: चेतावनी सुनो, तुरंत निर्णय लिया आ सुरक्षित रहू।
3: संपूर्ण सुविधा से संपन्न यूनिक अस्पताल रायपुर रूपनी आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज,
4: अब बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरन, वीर अस्पताल काठमांडू, एम्स अस्पताल दिल्ली के दक्ष एवं अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर सब द्वारा हर प्रकारक रोग के जांच आ इलाज करैत अछि।
3: एहिठाम महिला, स्त्री एवं प्रसूति, पुरुष आ बाल रोग संबंधी जांच आ इलाज करैत अछि।
5: सेवा आ सुविधा सब
4: 24 घंटा इमरजेंसी आ एम्बुलेंस सेवा, OPD, मेडिसिन सेवा,
5: ऑपरेशन सेवा, चर्म रोग, हार्ट जर्नी, डायबिटीज,
4: होल बॉडी जांच, सीटी स्कैन, ICU, NICU, OT,
3: डिजिटल एक्सरे, AC, नॉन AC कैबिन के सुविधा है। संपर्क कर जाए
4: यूनिक अस्पताल रूपनी रायपुर आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज 6 गणेश मंदिर नजदीक।
5: फोन
4: 031-530-7076,
5: मोबाइल
4: 9805-60800 आ एम्बुलेंस के नंबर 9805-56205, 9805-56202।
6: फिरता फिरता 20% समक्या सुफिरता
7: चाहिए पानी चाहा पानी
8: कैश फिरता लिनु भएता
9: एनसेल पैक किन्नु भएता जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिर्ता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल पैक किन्नु भएता शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

0: नवरत्न कुल ओइलको दुई मिनटको मालिसले राख्छ तपाईँलाई कुल, दिलाउँछ गर्मी, टाउको दुखाइ, थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम। नवरत्न वर्ल्ड नम्बर वन कुल ओइल, चिसो चिसो कुल कुल।
1: एकटा खुसीको खबर छ।
2: कथि छ?
1: विदेश से छुट्टी में आयल आदमी सब के श्रम स्वीकृति के काम अब राज विराज में चालू भ गेल छी। आँख के फोटो आ फिंगरप्रिंट के लेल कतौ बाहर नै जाय पड़तौ।
3: जी हाँ, अली कम्युनिकेशन
4: एहिठाम विदेश जेबाक लेल श्रम स्वीकृति के काम, देश विदेश के लेल हवाई टिकट बुकिंग आ टिकट के डेट चेंज, भारत के लेल रेलवे टिकट बुकिंग,
3: विदेश जेबाक लेल ओरिएंटेशन कक्षा, मेडिकल जांच, कतार आ दुबई के लेल विजिट वीजा एवं विदेश में चिट्ठी पत्र पठेबाक लेल कुरियर सेवा उपलब्ध अछि।
4: नया पासपोर्ट बनेबाक लेल ऑनलाइन केनाइ आ विदेश जाय वालाक लेल राष्ट्रीय परिचय पत्र के फ्री ऑनलाइन फॉर्म भरनाय के संगे हरेक कंपनी के मोबाइल थोक दर में बिक्री आ मरम्मत करैत अछि।
3: संपर्क
4: अली कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल्स, चतुर्भुज मार्केट, मेन रोड, लोहार गली, राजविराज 4, सप्तरी।
3: फोन
4: 0315325575।
3: मोबाइल
4: 9805002475।
5: रंग बहार रंग बहार,
6: बर्जर संगे उपहार उपहार, बम्पर मा यामाहा रेजियार,
5: बर्जर पेन्स ले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
6: साथै 65 इंच को स्मार्ट टीवी, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहार पनि। घर रंगाओ, खुशी बनाओ, उपहार जित्ने अवसर पाओ।
5: बर्जर पेन्स।

0: नीम करोली बाबा के जीवनी पर आधारित आ 175 करोड़ सँ बेसी के कारोबार विश्व भर में करो में सफल फिल्म हनुमान अंश शिव शंकर सिनेमा राजविराज में चल रहल अछि। फिल्म हनुमान अंश
1: हिंदी फिल्म हनुमान अंश सब परिवार आब देखू आ बाबा नीम करोली के जीवनी सँ प्रेरित हो फिल्म हनुमान अंश।
2: एखन अपने सब सुन रहल छी भोरकवा FM 92.8 MHz।

0: ये दीदी देह भारी छे आ डाँर पीठ से दुखाइए, कौन उपाय करबे?
1: बहुत पुरान आ अनुभवी छे डॉक्टर दिलीप कुमार सा अपने घर में सेवा दे रहल छे, चलू न ओते जांच करा दे छी।
2: अब अपने भवन राजविराज में गजेंद्र नारायण सिंह सर माथा अंचल अस्पताल में कार्यरत प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप कुमार सा टीचिंग अस्पताल काठमांडू MD
0: प्रसूति आ स्त्री रोग संबंधी संपूर्ण जांच आ इलाज करते है।
2: सेवा आ सुविधा सब
0: बच्चा दानी खसनाई के ऑपरेशन सेवा,
1: गर्भवती महिला जांच,
0: स्त्री रोग,
1: लिकोरिया, महीनावारी गड़बड़ी,
0: पीठ आ डाँर दुखेनाय,
1: पेशाब जलन,
0: मांस बढ़नाय,
1: निसंतान दंपति के परीक्षण,
0: IUI सेवा,
1: वीडियो एक्सरे,
2: आधुनिक लैब के संगे फार्मेसी सेवा उपलब्ध
1: अवश्य सेवा के मौका देल जाए।
2: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप कुमार सा राजविराज हनुमान नगर रोड साबिक जन स्वास्थ्य ऑफिस से पूरब छिन्नमस्ता अस्पताल के सामने दक्षिण साइड।
1: मोबाइल
2: 9861 77985 आ 9817 89133।

0: Media and Extreme Energy Drink.
1: यही सुनू
2: की कहे छे?
1: हम जाए छी तिरुपति ट्रेडर्स में, वही ठाम सीजन अनुसार के सब ब्यू विजन भेटे छे, खरीद लेबे आ चल अबे।
2: एक टा रोटावेटर के ऑर्डर सेहो दे देबे।
1: हेते
3: तिरुपति ट्रेडर्स राज विराज।
4: जी हाँ, एहिठाम विभिन्न प्रकारक औद्योगिक मशीन उचित दाम में उपलब्ध है।
3: चप्पल बनाबे वाला मशीन,
4: मुर्गा दाना बनाबे वाला मशीन आ माछ उत्पादन के लेल कृषि औजार सामान सब,
2: पावर ट्रेलर,
4: थ्रेसर,
2: रोटावेटर,
4: कम्पाइंड, धान आ गहूँ काटे वाला मशीन,
2: रोपे वाला मशीन,
4: स्प्रे, मिल सेट, जेनरेटर,
2: कृषि औजार, स्पेयर पार्ट्स
4: आ बोरिंग सामान संगे घर निर्माण आ हार्डवेयर संबंधी संपूर्ण सामान उपलब्ध है।
3: तिरुपति ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स, कंचनपुर रोड, राजविराज 8।
4: प्रोप्राइटर अशोक कुमार यादव।
3: मोबाइल
4: 9807788897 आ 9847452178।
5: अखन अपने साथ रहिए बोरकवा।

0: এখন ভড়কবা এফএম মা দিনকে 10 বাজল राजविराज में आप सब प्रत्येक दिन वरिष्ठ छाला यौन रोग तथा सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर रंजू पोखरेल MBBS MD डर्माटोलॉजिस्ट द्वारा जांच इलाज भ रहल अछि।
1: जो एहन कोनो समस्या अछि त निक आ प्रभावकारी इलाज के लेल अनुभवी डॉक्टर रंजू पोखरेल के क्लिनिक सरिता मेडिकल हॉल में संपर्क करू।
0: याद राखू, सरिता मेडिकल हॉल सरकारी अस्पताल के पश्चिम गेट में।
1: फोन नंबर 9890811978।
2: एनसेल प्याक किन्नु भयो त? जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरिद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्यास फिर्ता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल प्याक किन्नु भयो त? शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

0: नवरत्न कुल ओइलको दुई मिनटको मालिसले राख्छ तपाईँलाई कुल, दिलाउँछ गर्मी, टाउको दुखाइ, थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम। नवरत्न वर्ल्ड नम्बर वन कुल ओइल, चिसो चिसो कुल कुल।
1: कतेक दर्द करै छै, ठेहुन भीने आ नस फुलि जाइ छै।
2: की भ गेला से?
1: ओ बौआ, नस फुलि गेलै आ ठेहुन के जोर से दर्द करै छै।
3: आब चिंता नहि करह, चलह मंडल जी के क्लिनिक राजविराज मे।
2: डॉक्टर रिधिनाथ प्रसाद मंडल से जांच करा दै छियौ।
4: एरौ, आ हमर डाढ के नस बड़ दुखाइए बारे, ठीक भ जतै न?
2: पूरे ठीक भ जतै।
5: जी हाँ, हाड़ जोड़नी तथा नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिधिनाथ प्रसाद मंडल MBBS MS।
6: हर प्रकारक टूटल हड्डी जोड़नाए, प्लास्टर, ऑपरेशन आ नस रोग संबंधी जांच आ इलाज करैत अछि। संपर्क कैल जाए।
5: हाड़ जोड़नी तथा नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिधिनाथ प्रसाद मंडल, नर्मदा अर्थो केयर सेंटर, राजविराज, नेता चौक दक्षिण, हीरा फार्मेसी।
6: मोबाइल 9847996749 आ 9817930096।
7: आप अपने निवास सप्तरी सेवा आश्रम वेटनरी अस्पताल सब पश्चिम 2400 घंटा लैब आ फार्मेसी सुविधा के साथ सेवा दर आल अच्छा।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।
1: अपाङ्गता भेल व्यक्ति, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक आ बिरामी के विशेष ध्यान देबाक चाही।
2: आइ काल्हि अत्यधिक गर्मी आ गरम हवा चलो वाला समय अछि, ताहि एहन अवस्था में जर एनाय, उल्टी जकाँ लगनाय, थकान लगनाय, बेसी प्यास लगनाय, धड़कन बढ़नाय, श्वास प्रश्वास में समस्या भेनाय, अत्यधिक माथ दुखेनाय, बेहोश भेनाय, मांसपेशी सब दुखेनाय, उल्टी भेनाय जेहन समस्या सब देखल जा सकत अछि।
1: गरम हवा के प्रभाव तथा लू लाग से बचे वाला उपाय सब,
2: जूस शरबत आदि प्रशस्त मात्रा में पियल जाओ,
1: दिन भर प्रशस्त पानी आ झोर वाला चीज सब सेवन कैल जाए,
2: हल्का ढीला आ सूती के कपड़ा सब लगावल जाए,
1: संभवतः ठंडा स्थान में बैसल जाए,
2: दोपहर के समय में अनावश्यक घर से बाहर नहीं जाओ,
1: बाहर जाइए परत छाता टोपी चश्मा आ पंजा प्रयोग कैल जाए,
2: खाली पेट बाहर नहीं जाओ,
1: दोपहर के समय में कड़ा शारीरिक परिश्रम नहीं कैल जाए,
2: स्वास्थ्य संबंधी कोनो प्रकार के समस्या देखल जायत अछि तऽ स्वास्थ्य कर्मी संग नियमित संपर्क में रह अनुरोध कैल जायत अछि। सबल नेपाल आ समावेशी अपांग संग सप्तरीक साझेदारी तथा CBM ग्लोबल के सहयोग में संचालित अपांगता समावेशी विपद जोखिम न्यूनीकरण परियोजना द्वारा जनहित में जारी संदेश।
3: अपने साथ रहिए, बोलक बा।

0: बाढ़ के मौसम में सतर्क रहू आ सुरक्षित रहू। बाढ़ कोनो बखत आबि सकैत अछि, ताहि प्रतिकार्य के लेल तैयार रहू।
1: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग DHM द्वारा नेपाल के विभिन्न भाग में औसत से बेसी वर्षा होबाक पूर्वानुमान कयल गेल अछि, जै कारण बाढ़ आ कटान के जोखिम बढ़ सकैत अछि।
0: सतर्क रहि कऽ आवश्यक जानकारी प्राप्त करू आ स्थानीय सूचना सब के पालन करू। अहाँ के सुरक्षा अहीं के जानकारी पर निर्भर अछि।
1: बाढ़ के जोखिम भेला पर ई उपाय सब अपनावल जाओ।
0: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, वडा कार्यालय, स्थानीय सरकार तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण संबंधी जिम्मेवार व्यक्ति सब प्राप्त बाढ़ संबंधी

0: जानकारी आ चेतावनी के ध्यान पूर्वक सुनु आ तही अनुसार उपयुक्त निर्णय लिय।
1: नजदीक रहल नदी खोला में पानिक बहाव के नियमित रूप में अनुगमन करू। नदी किनार या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बसोबास कर रहल छी त सुरक्षित आश्रय स्थल या उच्चगर स्थान में रहू आ सुरक्षित रूप से निकले वाला रास्ता बाट खोजू।
0: सूचना द्वारा चेतावनी जारी भेल त देर नहीं कर तुरंत सुरक्षित स्थान में जेबाक लेल तैयार रहू।
1: अति आवश्यक सामान जना कि टॉर्च लाइट, मोबाइल फोन, चार्जर, दवाई, सूखा खाय वाला सामान, सफा पीबा वाला पानी, नगद रुपया, नागरिकता, पासपोर्ट लगायत अन्य प्रमाण पत्र सब झटपट झोला में तैयारी अवस्था में राखू। झटपट झोला का घर भीतर जल्दी पहुँचा वाला आ तुरंत लौ जा सके वाला स्थान में राखू।
0: अपन संपत्ति के सुरक्षा करू, संभव अछि त बहुमूल्य सामान आ चौपाया के उच्चगर स्थान में लौ जाओ।
1: दोसरों के मदद करू, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपंगता भेल व्यक्ति सब के आवश्यक सहयोग करू। गर्भवती, सुतकेरी आ स्तनपान करा रहल माय के लेल सुरक्षित वास के व्यवस्था करू। ओ सब के लेल सकभर अलगे आ सुरक्षित चर्पी के प्रबंध करू।
0: विपद के बाद होवा वाला सर्पदंश तथा पानी जन्य संक्रामक रोग के जोखिम रहला सँ सचेत रहू। ई सूचना परिवार, पड़ोसी आ जन समुदाय में जानकारी कराओ।
1: बाढ़ दरवाजा तक आबि जाए ऐसे पहिने तैयार रहू आ आइए से सतर्क भ जाओ।
0: ई संदेश अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र ईसी मोड अंतर्गत के हाईग्रिड परियोजना द्वारा ऑस्ट्रेलियन सरकार आ सबल नेपाल के सहयोग में प्रसारण कैल गेल अछि।
2: चेतावनी सुनू, तुरंत निर्णय लिया आ सुरक्षित रहू।

0: सौ प्याकेट भित्र रहेका कुपनहरू हल्का प्लस रमाइलोलाई मिलाउनुहोस् र प्राप्त गर्नुहोस् एक प्याकेट मामा चाउचाउ सित्तैमा।
1: मामासँग हल्का रमाइलो।
2: भौजी बहुत टेंशन में छे, की भ गेल?
3: की हेतै देखू ना, केन बॉक्स पलंग खरीद के आनलकै जे नोट कसते कसते सब टूट गेल।
2: सुनू, जय श्री हनुमान ट्रेडर्स में बहुत मजबूत बॉक्स पलंग भेटै छे, खरीद के आन लिया आ ओहिठाम सब सामान भेटै छे।
3: ओ त की सब तैयार करै छे यो?
2: बॉक्स पलंग थ्री पीस आ टू पीस दराज, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, कुर्सी, अलना, ड्रेसिंग टेबल, बाघ पंजा सोफा सेट।
4: जी हाँ, शादी विवाह आ ऑफिस के लेल संपूर्ण सामान आधुनिक मशीन से कंप्यूटर के डिजाइन अनुसार फर्नीचर तैयार कैल जाय छे।
5: 5x6 फीट के फुल बुटा के बॉक्स पलंग शादी सेट 35,000 आ 6x7 फीट के शादी सेट बॉक्स पलंग 45,000 में भ जायत। संगे मॉडल किचन खरात कार्विन के व्यवस्था छे। पलाई, फर्मेका, रेडीमेड ढोका, हैंडल, हत्था, कांटी, कब्जा, स्प्रिट, चपरा आ शीशा लगायत फर्नीचर के संपूर्ण सामान उपलब्ध है।
4: प्रोपराइटर शंभु सुथियार।
5: जय श्री हनुमान ट्रेडर्स, राजविराज 1, कंचनपुर रोड, नहर चौक, चूड़ा मिल के बगल में।
4: मोबाइल
5: 9807040070 आ 9862860270।
6: फिरता फिरता 20% समकेश फिरता सहीले पानी चाह पानी
7: कैश फिरता लिनु भएता
8: एनसेल प्याक किन्नु भएता जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिरता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल प्याक किन्नु भएता शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

कुलो एल्को दुई मिनट को मालिश ले रख्छ तपाईलाई कुल, दिलाउँछ गर्मी, टाउको दुखाई थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम। नवरत्न वर्ल्ड नम्बर वन कुलो एल, चिसो चिसो कुल कुल।

0: Mania.
1: Extreme energy drink.
2: अपने साथ यूनाइटेड बोरकुमा एफएम

0: एखन भोरकवा एफएम म दिन के 11 बाजल।
1: सम्पूर्ण सुविधा सँ सम्पन्न युनिक अस्पताल रायपुर रुपनी आ युनिक सिटी अस्पताल राजविराज।
2: अब बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरन, वीर अस्पताल काठमांडू, एम्स अस्पताल दिल्ली के दक्ष एवं अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर सब द्वारा हर प्रकारक रोग के जांच आ इलाज करैत अछि।
1: एहिठाम महिला, स्त्री एवं प्रसूति, पुरुष आ बाल रोग संबंधी जांच आ इलाज करैत अछि।
3: सेवा आ सुविधा सब
2: 24 घंटा इमरजेंसी आ एम्बुलेंस सेवा, ओपीडी, मेडिसिन सेवा,
3: ऑपरेशन सेवा, चर्म रोग, हार्ट जर्नी, डायबिटीज,
2: होल बॉडी जांच, सीटी स्कैन, आईसीयू, एनआईसीयू, ओटी,
1: डिजिटल एक्सरे, एसी, नॉन एसी केबिन के सुविधा है।
3: संपर्क कर जाए
2: यूनिक अस्पताल रुपनी रायपुर आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज 6 गणेश मंदिर नजदीक।
3: फोन
2: 031-530-7076,
3: मोबाइल
2: 9801560800 आ एम्बुलेंस के नंबर 9801-56205, 9801-56202।
4: फिरता फिरता 20% समक्या सुफिरता जैले पनी चाहा पनी
5: कैश फिरता लिनु भएता
6: एनसेल पैक किन्नु भएता जैले पनी जहाँ पनी पैक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिरता एनसेल एप मा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल पैक किन्नु भएता शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

0: नीम करोली बाबा के जीवनी पर आधारित आ 175 करोड़ से बेसी के कारोबार विश्व भर में करो में सफल फिल्म हनुमान अंश शिव शंकर सिनेमा राज विराज में चल रहा है। फिल्म हनुमान अंश
1: हिंदी फिल्म हनुमान अंश सब परिवार आब देखू आ बाबा नीम करोली के जीवनी से प्रेरित हो फिल्म हनुमान अंश।
2: एखन अपने सब सुन रहल छी भोरकवा FM 92.8 MHz।

0: Liponia. Extreme energy drink.
1: अपने साथ जरूर रहिए बोलो कुमार ये फिर

0: प्याकेट भित्र रहेका कुपनहरू हल्का प्लस रमाइलोलाई मिलाउनुहोस् र प्राप्त गर्नुहोस् एक प्याकेट मामा चाउचो सित्तैमा।
1: मामासँग हल्का रमाइलो।
2: सम्पूर्ण सुविधा सह सम्पन्न युनिक अस्पताल रायपुर रुपनी आ युनिक सिटी अस्पताल राजविराज।
3: अब बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान वीर अस्पताल काठमांडू एम्स अस्पताल दिल्ली के दक्ष एवं अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर सब द्वारा हर प्रकारक रोग के जांच आ इलाज करते
2: ऐठाम महिला स्त्री एवं प्रसूति पुरुष आ बाल रोग संबंधी जांच आ इलाज करते
4: सेवा आ सुविधा सब
3: 24 घंटा इमरजेंसी आ एम्बुलेंस सेवा ओपीडी मेडिसिन सेवा
4: ऑपरेशन सेवा चर्म रोग हार्ट जर्नी डायबिटीज
3: होल बॉडी जांच सीटी स्कैन आईसीयू एनआईसीयू ओटी
2: डिजिटल एक्सरे एसी नॉन एसी कैबिन के सुविधा है
4: संपर्क कैल जाए
3: यूनिक अस्पताल रुपनी रायपुर आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज 6 गणेश मंदिर नजदीक
4: फोन
3: 031-530-7076
4: मोबाइल
3: 9805-60800 आ एम्बुलेंस के नंबर 9805-56205 9805-56202
5: फिरता 20% समकेश फिरता जहिले पनि जहाँ पनि
6: क्याश फिरता लिनु भए त
7: एनसेल प्याक किन्नु भए त जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिरता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस् एनसेल प्याक किन्नु भए त शर्तहरू लागू हुनेछन् एनसेल नेपालकै लागि

0: नवरत्नको रोयलको दुई मिनटको मालिसले राख्छ तपाईँलाई कुल, दिलाउँछ गर्मी, टाउको दुखाई थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम। नवरत्न वर्ल्ड नम्बर वन कुल ओइल, चिसो चिसो कुल कुल।
1: यै सुनु,
2: के कहै छी?
1: हम जाइ छी तिरुपति ट्रेडर्स मे, ओइ ठाम सीजन अनुसार के सब ब्यू बिजन भेटै छै, खरीद लेबै आ चलि अयबै।
2: एकटा रोटावेटर के ऑर्डर सेहो दे देबै।
1: हेतै
3: तिरुपति ट्रेडर्स राजविराज।
4: जी हाँ, एहिठाम विभिन्न प्रकारक औद्योगिक मशीन उचित दाम में उपलब्ध है।
3: चप्पल बनाबे वाला मशीन,
4: मुर्गा दाना बनाबे वाला मशीन आ माछ उत्पादन के लेल कृषि औजार सामान सब,
3: पावर ट्रेलर,
4: थ्रेसर,
3: रोटावेटर,
4: कम्पाइन, धान आ गहूम काटे वाला मशीन,
3: रोपे वाला मशीन,
4: स्प्रे, मिल सेट, जेनरेटर,
3: कृषि औजार, स्पेयर पार्ट्स
4: आ बोरिंग सामान संगे घर निर्माण आ हार्डवेयर संबंधी संपूर्ण सामान उपलब्ध।
3: तिरुपति ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स, कंचनपुर रोड, राजविराज 8।
4: प्रोप्राइटर अशोक कुमार यादव।
3: मोबाइल
4: 9807788897 आ 9847552178।
5: एखन अपने सब सुन रहल छी भोरकवा।

0: এখন ভড়কওয়া এফএম মা দিনকে এক বাজল राज विराज में आप सब प्रत्येक दिन वरिष्ठ छाला यौन रोग तथा सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर रंजू पोखरेल MBBS MD डर्माटोलॉजिस्ट द्वारा जांच इलाज भ रहल अछि।
1: जो एहन कोनो समस्या अछि त निक आ प्रभावकारी इलाज के लेल अनुभवी डॉक्टर रंजू पोखरेल के क्लिनिक सरिता मेडिकल हॉल में संपर्क करू।
0: याद राखू, सरिता मेडिकल हॉल सरकारी अस्पताल के पश्चिम गेट में।
1: फोन नंबर 9808111978।
2: एनसेल प्याक किन्नु भयो त? जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरिद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्यास फिर्ता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल प्याक किन्नु भयो त? शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

0: Mania.
1: Extreme energy drink.
2: अपाङ्गता भेल व्यक्ति, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक आ बिरामी के विशेष ध्यान देबाक चाही।
3: आइ काल्हि अत्यधिक गर्मी आ गरम हवा चलो वाला समय अछि। ताई एहन अवस्था में जर एनाई, उल्टी जकाँ लगनाय, थकान लगनाय, बेसी प्यास लगनाय, धड़कन बढ़नाय, श्वास प्रश्वास में समस्या भेनाय, अत्यधिक माथ दुखेनाय, बेहोश भेनाय, मांसपेशी सब दुखेनाय, उल्टी भेनाय जेहन समस्या सब देखल जा सकत अछि।
2: गरम हवा के प्रभाव तथा लू लागे से बचाव वाला उपाय सब
3: जूस शरबत आदि प्रशस्त मात्रा में पियल जाओ।
2: दिन भर प्रशस्त पानी आ झोर वाला चीज सब सेवन कैल जाए।
3: हल्का ढीला आ सूती के कपड़ा सब लगावल जाए।
2: संभवतः ठंडा स्थान में बैसल जाए।
3: दोपहर के समय में अनावश्यक घर से बाहर नहीं जाओ।
2: बाहर जाइए पर छाता टोपी चश्मा आ पंजा प्रयोग कैल जाए।
3: खाली पेट बाहर नहीं जाओ।
2: दोपहर के समय में कड़ा शारीरिक परिश्रम नहीं कैल जाए।
3: स्वास्थ्य संबंधी कोनो प्रकार के समस्या देखल जाए तो स्वास्थ्य कर्मी संग नियमित संपर्क में रह अनुरोध कैल जाए। सबल नेपाल आ समावेशी अपांग संग सप्तरीक साझेदारी तथा CBM ग्लोबल के सहयोग में संचालित अपांगता समावेशी विपद जोखिम न्यूनीकरण परियोजना द्वारा जनहित में जारी संदेश।
4: अपने साथ रहती बोरकवा।

0: भित्र रहेका कुपनहरू हल्का प्लस रमाइलोलाई मिलाउनुहोस् र प्राप्त गर्नुहोस् एक प्याकेट मामा चाउचाउ सित्तैमा।
1: मामासँग हल्का रमाइलो।
2: अहाँको गहना बडा सुन्दर यो डिजाइनो नयाँ कता बनेलिए?
3: ये काव्या ज्वेलर्स राजविराजमा बनेलिए। ओतय आधुनिक डिजाइनका सोना चाँदीका गर गहना अर्डर बमोजिमका गहना गारेन्टीका साथ बनबै छी आ नवग्रहका पत्थर सेहो भेटै छै।
4: काव्या ज्वेलर्स राजविराज साथ मेन रोड अदालत के पूर्व प्रोप्राइटर सोनी कुमारी साह आ सुनील साह। मोबाइल 98-97-40-445।
5: सम्पूर्ण सुविधा सँग सम्पन्न युनिक अस्पताल रायपुर रुपनी आ युनिक सिटी अस्पताल राजविराज।
6: अब बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान वीर अस्पताल काठमाण्डू एम्स अस्पताल दिल्ली के दक्ष एवं अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर सब द्वारा हर प्रकारक रोग के जांच आ इलाज करैत अछि।
5: एहिठाम महिला स्त्री एवं प्रसूति पुरुष आ बाल रोग संबंधी जांच आ इलाज करैत अछि।
2: सेवा आ सुविधा सब
6: 24 घंटा इमरजेंसी आ एम्बुलेंस सेवा ओपीडी मेडिसिन सेवा
2: ऑपरेशन सेवा चर्म रोग हार्ट जर्नी डायबिटीज
6: होल बॉडी जांच सीटी स्कैन आईसीयू एनआईसीयू ओटी
5: डिजिटल एक्सरे एसी नॉन एसी कैबिन के सुविधा है।
2: संपर्क कैल जाए
6: यूनिक अस्पताल रुपनी रायपुर आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज 6 गणेश मंदिर नजदीक।
2: फोन
6: 031-530-7776।
2: मोबाइल
6: 98015-60800 आ एम्बुलेंस के नंबर 98015-56205 98015-56202।
7: फिरता फिरता 20% समक्यास फिरता सहिले पनि जहाँ पनि
8: क्याश फिरता लिनु भए त
9: एनसेल प्याक किन्नु भए त जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिरता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल प्याक किन्नु भए त शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।
2: यता कोनो सुविधा सम्पन्न जग्गा नै छै?
10: छैन त, कृष्णा पार्टी प्यालेस एन्ड लज राजविराज ओहिठाम हरेक शुभ कार्य विवाह मुंडन हरेक दृष्टिकोण सँ सुविधा सम्पन्न छै।
5: राजविराज के साथ कृष्णा पार्टी पैलेस नाम
6: अपने शहर राजविराज में सुविधा संपन्न कृष्णा पार्टी पैलेस एंड लॉज।
5: हर एक शुभ कार्य शुभ विवाह उपनयन मुंडन आ पार्टी के लेल सुविधा संपन्न
6: कृष्णा पार्टी पैलेस। एहिठाम आकर्षक सजावट सहित एसी नॉन एसी डिलक्स आ कॉमन रूम
5: 24 घंटा बिजली सुविधा स्वच्छ खाने पानी
6: शांत वातावरण में विवाह स्थल सेमिनार तालीम हॉल के व्यवस्था है।
5: टेबल कुर्सी आ कैटरिंग के व्यवस्था।
6: बुकिंग के लिए संपर्क करी कृष्णा पार्टी पैलेस एंड लॉज 33 गाछी राजविराज सप्तरी।
5: मोबाइल
6: 98047-48-454 आ 98428-22430।

0: आफ्नो कुल ओइलको 2 मिनटको मालिसले राख्छ तपाईँलाई कुल, दिलाउँछ गर्मी, टाउको दुखाइ, थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम। नवरत्न वर्ल्ड नम्बर 1 कुल ओइल, चिसो चिसो कुल कुल।
1: एकटा खुसीको खबर छौ।
2: कथि छौ?
1: विदेश से छुट्टी में आयल आदमी सब के श्रम स्वीकृति के काम अब राज विराज में चालू भ गेल छी। आंख के फोटो आ फिंगर प्रिंट के लेल कतो बाहर नहीं जा पड़तो।
3: जी हाँ, अली कम्युनिकेशन
4: ऐठम विदेश जवाक लेल श्रम स्वीकृति के काम, देश विदेश के लेल हवाई टिकट बुकिंग आ टिकट के डेट चेंज, भारत के लेल रेलवे टिकट बुकिंग,
3: विदेश सेवा के लेल ओरिएंटेशन कक्षा, मेडिकल जांच, कतार आ दुबई के लेल विजिट वीसा एवं विदेश में चिट्ठी पत्र पठेबाक लेल कुरियर सेवा उपलब्ध अछि।
4: नया पासपोर्ट बनेबाक लेल ऑनलाइन केनाई आ विदेश जाय वाला के लेल राष्ट्रीय परिचय पत्र के फ्री ऑनलाइन फॉर्म भरनाई के संगे हरेक कंपनी के मोबाइल थोक दर में बिक्री आ मरम्मत करैत अछि।
3: संपर्क
4: अली कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल्स, चतुर्भुज मार्केट, मेन रोड, लोहार गली, राजविराज 4, सप्तरी।
3: फोन
4: 031-532-575,
3: मोबाइल
4: 9805-02-475।

0: नवरत्न कुल ओइलको 2 मिनटको मालिसले रक्ष तपाईँलाई कुल दिलाउँछ, गर्मी टाउको दुखाई थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम। नवरत्न वर्ल्ड नम्बर 1 कुल ओइल, चिसो चिसो कुल कुल।
1: अपने साथ

0: द्वारा जांच आ इलाज भऽ रहल अछि।
1: जँ एहन कोनो समस्या अछि तऽ नीक आ प्रभावकारी इलाज के लेल अनुभवी डॉक्टर रंजू पोखरेल के क्लिनिक सरिता मेडिकल हॉल में संपर्क करू।
0: याद राखू, सरिता मेडिकल हॉल सरकारी अस्पताल के पश्चिम गेट में।
1: फोन नंबर 9808011978।
2: हे कनिया, अहाँ के गहना बड़ा सुंदर या डिजाइनो नया कतौ बनेलिए?
3: ये काव्या ज्वेलर्स राज विराज में बनेलिए। ओतः आधुनिक डिजाइन का सोना चांदी का गर गहना ऑर्डर बमोजिम का गहना गारंटी के साथ बनबै छी आ नवग्रह का पत्थर सेहो भेटै छै।
4: काव्या ज्वेलर्स राज विराज साथ मेन रोड अदालत के पूर्व, प्रोप्राइटर सोनी कुमारी साह आ सुनील साह। मोबाइल 9197404545।
5: भौजी, बहुत टेंशन में छे, की भ गेल?
2: की हेते देखू ना, केन बॉक्स पलंग खरीद के आनलके जे नोट कसते कसते सब टूट गेल।
5: सुनू, जय श्री हनुमान ट्रेडर्स में बहुत मजबूत बॉक्स पलंग भेटे छे, खरीद के आन लिया आ वही ठाम सब सामान भेटे छे।
2: ओतो की सब तैयार करे छे यो?
5: बॉक्स पलंग, थ्री पीस आ टू पीस दराज, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, कुर्सी, अलना, ड्रेसिंग टेबल, बाघ पंजा सोफा सेट।
3: जी हाँ, शादी विवाह आ ऑफिस के लेल संपूर्ण सामान आधुनिक मशीन से कंप्यूटर के डिजाइन अनुसार फर्नीचर तैयार कयल जाय छे।
5: 5x6 फीट के फुल बुटा के बॉक्स पलंग शादी सेट 35,000 आ 6x7 फीट के शादी सेट बॉक्स पलंग 45,000 में भ जायत। संगे मॉडल किचन खरात कार्विन के व्यवस्था छे। पलाई, फोर्मिका, रेडीमेड ढोका, हैंडल, हत्था, कांटी, कब्जा, स्प्रिट, चपरा आ शीशा लगायत फर्नीचर के संपूर्ण सामान उपलब्ध।
3: प्रोप्राइटर शंभु सुथियार।
5: जय श्री हनुमान ट्रेडर्स, राजविराज 1, कंचनपुर रोड, नहर चौक, चूड़ा मिल के बगल में।
3: मोबाइल
5: 9847040070 आ 9862860270।
6: फिरता 20% समकेश फिरता सहीले पनि चाहा पनि
7: क्याश फिरता लिनु भए त
8: एनसेल प्याक किन्नु भए त जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिरता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल प्याक किन्नु भए त शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

0: कुल ओइलको दुई मिनटको मालिस लिएर छ तपाईँलाई कुल दिलाउँछ गर्मी टाउको दुखाई थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम नवरत्न वर्ल्ड नम्बर वन कुल ओइल चिसो चिसो कुल कुल
1: कतेक दर्द करै छै ठेहुन भीने आ नस फुलि जाइ छै
2: की भ गेला से
1: ओ बुआ नस फुलि गेलै आ ठेहुन के जोड़ से दर्द करै छै
3: आप चिंता नहीं करा चलो मंडल जी के क्लिनिक राजविराज में
2: डॉक्टर रिद्धिनाथ प्रसाद मंडल से जांच करा दे
4: छियौ आ हमर डाढ़ का नस बड़ दुखाई या बारे ठीक भ जतै न
2: पूरे ठीक भ जतै
5: जी हाँ हाड़ जोड़नी तथा नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिद्धिनाथ प्रसाद मंडल MBBS MS
6: हर प्रकारक टूटल हड्डी जोड़नाए प्लास्टर ऑपरेशन आ नस रोग संबंधी जांच आ इलाज करैत अछि संपर्क कैल जाए
5: हाड़ जोड़नी तथा नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिद्धिनाथ प्रसाद मंडल नर्मदा अर्थो केयर सेंटर राजविराज नेता चौक दक्षिण हीरा फार्मेसी
6: मोबाइल 9847996749 आ 9817930096 आब अपने निवास सप्तरी सेवा आश्रम वेटनरी अस्पताल सब पश्चिम 24 घंटा लैब आ फार्मेसी सुविधा के साथ सेवा दर आल
7: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई
6: नीम करोली बाबा के जीवनी पर आधारित आ 175 करोड़ से बेसी के कारोबार विश्व भर में करो में सफल फिल्म हनुमान अंश शिव शंकर सिनेमा राजविराज में चल रहल है फिल्म हनुमान अंश
8: हिंदी फिल्म हनुमान अंश सब परिवार आब देखू आ बाबा नीम करोली के जीवनी से प्रेरित हो फिल्म हनुमान अंश
9: एखन अपने सब सुन रहल छी भोरकवा FM 92.8 MHz

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।
1: अपाङ्गता भेल व्यक्ति, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक आ बिरामी के विशेष ध्यान देबाक चाही।
2: आइ काल्हि अत्यधिक गर्मी आ गरम हवा चलो वाला समय अछि। ताई एहन अवस्था में जर एनाई, उल्टी जकां लगनाय, थकान लगनाय, बेसी प्यास लगनाय, धड़कन बढ़नाय, श्वास प्रश्वास में समस्या भेनाय, अत्यधिक माथ दुखेनाय, बेहोश भेनाय, मांसपेशी सब दुखेनाय, उल्टी भेनाय जेहन समस्या सब देखल जा सकत अछि।
1: गरम हवा के प्रभाव तथा लू लागे से बचे वाला उपाय सब,
2: जूस, शरबत आदि प्रशस्त मात्रा में पियल जाओ।
1: दिन भर प्रशस्त पानी आ झोर वाला चीज सब सेवन कैल जाए।
2: हल्का, ढीला आ सूती के कपड़ा सब लगावल जाए।
1: संभवतः ठंडा स्थान में बैसल जाए।
2: दोपहर के समय में अनावश्यक घर से बाहर नहीं जाओ।
1: बाहर जाइए पर छाता, टोपी, चश्मा आ पंजा प्रयोग कैल जाए।
2: खाली पेट बाहर नहीं जाओ।
1: दोपहर के समय में कड़ा शारीरिक परिश्रम नहीं कैल जाए।
2: स्वास्थ्य संबंधी कोनो प्रकार के समस्या देखल जाए तो स्वास्थ्य कर्मी संग नियमित संपर्क में रह अनुरोध कैल जाए। सबल नेपाल आ समावेशी अपांग संग सप्तरीक साझेदारी तथा CBM ग्लोबल के सहयोग में संचालित अपांगता समावेशी विपद जोखिम न्यूनीकरण परियोजना द्वारा जनहित में जारी संदेश।
3: अपने साथ रहिए बोलकबा एफएम।

0: आफ्नो कुल ओइलको दुई मिनटको मालिसले राख्छ तपाईँलाई कुल, दिलाउँछ गर्मी, टाउको दुखाइ, थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम। नवरत्न वर्ल्ड नम्बर वन कुल ओइल, चिसो चिसो कुल कुल।
1: कतेक दर्द करै छै, ठेहुन भीने आ नस फुलि जाइ छै।
2: की भ गेला से?
1: ओ बुआ, नस फुलि गेलै आ ठेहुन के जोर से दर्द करै छै।
3: आप चिंता नहीं कर, चलो मंडल जी के क्लिनिक राजविराज में
2: डॉक्टर रिधिनाथ प्रसाद मंडल से जांच करा दे छियै।
4: रो आ हमारे डाड का नस बड़ दुखाइया बारे, ठीक भ जतै न?
2: पूरे ठीक भ जतै।
5: जी हाँ, हार जोड़नी तथा नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिधिनाथ प्रसाद मंडल MBBS MS।
6: हर प्रकारक टूटल हड्डी जोड़नाए, प्लास्टर, ऑपरेशन आ नस रोग संबंधी जांच आ इलाज करैत अछि। संपर्क कैल जाए।
5: हार जोड़नी तथा नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिधिनाथ प्रसाद मंडल, नर्मदा अर्थो केयर सेंटर, राजविराज, नेता चौक दक्षिण, हीरा फार्मेसी।
6: मोबाइल 9847996749 आ 9817930096।
7: आप अपने निवास सप्तरी सेवा आश्रम वेटनरी अस्पताल से पश्चिम 2400 घंटा लैब आ फार्मेसी सुविधा के साथ सेवा दर आल।

0: Mania?
1: Extreme energy drink.
2: ये सुनो
3: की कहे छे
2: हम जाय छी तिरुपति ट्रेडर्स में वही ठाम सीजन अनुसार के सब ब्यू विजन भेटे छे खरीद लेबे आ चलि एबे
3: एकटा रोटावेटर के ऑर्डर सेहो दे देबे
2: हेते
4: तिरुपति ट्रेडर्स राज विराज
5: जी हाँ एहिठाम विभिन्न प्रकारक औद्योगिक मशीन उचित दाम में उपलब्ध है
4: चप्पल बनाबे वाला मशीन
5: मुर्गा दाना बनाबे वाला मशीन आ माछ उत्पादन के लेल कृषि औजार सामान सब
3: पावर ट्रेलर
5: थ्रेसर
3: रोटावेटर
5: कम्पाइन धान आ गहूँ काटे वाला मशीन
3: रोपे वाला मशीन
5: स्प्रे मिल सेट जेनरेटर
3: कृषि औजार स्पेयर पार्ट्स
5: आ बोरिंग सामान संगे घर निर्माण आ हार्डवेयर संबंधी संपूर्ण सामान उपलब्ध है
4: तिरुपति ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स कंचनपुर रोड राजविराज 8
5: प्रोप्राइटर अशोक कुमार यादव
4: मोबाइल
5: 9807788897 आ 9847552178
6: एखन अपने सब सुन रहल छी भोरक बाय।

0: नीम करोली बाबा के जीवनी पर आधारित आ 175 करोड़ सँ बेसी के कारोबार विश्व भर में करो में सफल फिल्म हनुमान अंश शिव शंकर सिनेमा राज विराज में चल रहल अछि। फिल्म हनुमान अंश
1: हिंदी फिल्म हनुमान अंश सब परिवार आब देखू आ बाबा नीम करोली के जीवनी सँ प्रेरित हो फिल्म हनुमान अंश।
0: राज विराज में आप सब प्रत्येक दिन वरिष्ठ छाला यौन रोग तथा सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर रंजू पोखरेल MBBS MD डर्माटोलॉजिस्ट द्वारा जांच इलाज भ रहल अछि।
2: जो एहन कोनो समस्या अछि तो नीक आ प्रभावकारी इलाज के लेल अनुभवी डॉक्टर रंजू पोखरेल के क्लिनिक सरिता मेडिकल हॉल में संपर्क करू।
0: याद रखू सरिता मेडिकल हॉल सरकारी अस्पताल के पश्चिम गेट में।
2: फोन नंबर 9890811978।
3: फिरता 20% समस्या फिरता सहीले पनि चाह पनि
4: क्याश फिरता लिनु भए त
5: एनसेल प्याक किन्नु भए त जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिरता एनसेल एप मा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल प्याक किन्नु भए त शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

भारत न कुल ओइल को दुई मिनट को मालिश ले रख्छ तपाईलाई कुल दिलाउँछ गर्मी टाउको दुखाइ थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम नवरत्न वर्ल्ड नम्बर वन कुल ओइल चिसो चिसो कुल कुल

0: Mania?
1: Extreme Energy Drink.
2: 92.8 MHz.

0: सम्पूर्ण सुविधा सँग सम्पन्न युनिक अस्पताल रायपुर रुपनी आ युनिक सिटी अस्पताल राजविराज
1: अब बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान वीर अस्पताल काठमांडू एम्स अस्पताल दिल्ली के दक्ष एवं अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर सब द्वारा हर प्रकारक रोग के जांच आ इलाज करते
0: एठाम महिला स्त्री एवं प्रसूति पुरुष आ बाल रोग संबंधी जांच आ इलाज करते
2: सेवा आ सुविधा सब
1: 24 घंटा इमरजेंसी आ एम्बुलेंस सेवा ओपीडी मेडिसिन सेवा
2: ऑपरेशन सेवा चर्म रोग हार्ट जर्नी डायबिटीज
1: होल बॉडी जांच सीटी स्कैन आईसीयू एनआईसीयू ओटी
0: डिजिटल एक्सरे एसी नॉन एसी कैबिन के सुविधा है
2: संपर्क कैल जाए
1: यूनिक अस्पताल रुपनी रायपुर आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज 6 गणेश मंदिर नजदीक
2: फोन
1: 031-530-7076
2: मोबाइल
1: 9805-60800 आ एम्बुलेंस के नंबर 9805-56205 9805-56202
2: एतो कोनो सुविधा संपन्न

0: राज विराज सप्तरी
1: मोबाइल
0: 9847484 आ 9848222430
2: एकटा खुशी के खबर छौ
3: कथु छौ
2: विदेश से छुट्टी में आयल आदमी सब के श्रम स्वीकृति के काम अब राज विराज में चालू भ गेल छी आंख के फोटो आ फिंगरप्रिंट के लेल कतौ बाहर नहीं जा पड़तो
1: जी हाँ अली कम्युनिकेशन
0: एहिठाम विदेश जवाक लेल श्रम स्वीकृति के काम देश विदेश के लेल हवाई टिकट बुकिंग आ टिकट के डेट चेंज भारत के लेल रेलवे टिकट बुकिंग
1: विदेश जवाक लेल ओरिएंटेशन कक्षा मेडिकल जांच कतार आ दुबई के लेल विजिट वीजा एवं विदेश में चिट्ठी पत्र पठेबाक लेल कुरियर सेवा उपलब्ध अछि
0: नया पासपोर्ट बनेबाक लेल ऑनलाइन केनाइ आ विदेश जाय वालाक लेल राष्ट्रीय परिचय पत्र के फ्री ऑनलाइन फॉर्म भरनाय के संग हरेक कंपनी के मोबाइल थोक दर में बिक्री आ मरम्मत करैत अछि
1: संपर्क
0: अली कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल्स चतुर्भुज मार्केट मेन रोड लोहार गली राज विराज 4 सप्तरी
1: फोन
0: 0315325575
1: मोबाइल
0: 9801502475

0: extreme energy drink.
1: अपने साथ दिन रहती बोर रखवा ये फिर

0: এখন ভরকওয়া এফএম দিনকে পাঁচ বাজল বাইর কে মৌসম মে সতর্ক রহু আ সুরক্ষিত রহু বাইর কোনো বখত আইব সকেত আছে তাই প্রতিকার্য কে লেল তৈয়ার রহু
1: জল তথা মৌসম বিজ্ঞান বিভাগ DHM দ্বারা নেপাল কে বিভিন্ন ভাগ মে ঔসত সে বেশি বর্ষা হবাক পূর্ব অনুমান কেল গেল আছে যেই কারণ বাইর আ কাটান কে জোখিম বড় সকেত আছে
0: সতর্ক রহি ক আবশ্যক জানকারী প্রাপ্ত করু আ স্থানীয় সূচনা সব কে পালন করু আহা কে সুরক্ষা अही के जानकारी पर निर्भर है
1: बाढ़ के जोखिम भेला पर ई उपाय सब अपनावल जाओ
0: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग वडा कार्यालय स्थानीय सरकार तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण संबंधी जिम्मेवार व्यक्ति से प्राप्त बाढ़ संबंधी जानकारी आ चेतावनी के ध्यान पूर्वक सुनु आ तही अनुसार उपयुक्त निर्णय लिया
1: नजदीक रहल नदी खोला में पानिक बहाव के नियमित रूप में अनुगमन करू नदी किनार या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बसोबास कर रहल छी त सुरक्षित आश्रय स्थल या उच्चगर स्थान में रहू आ सुरक्षित रूप से निकले वाला रास्ता बाट खोजू
0: सूचना द्वारा चेतावनी जारी भेल त देर नहीं को तुरंत सुरक्षित स्थान में जेबाक लेल तैयार रहू
1: अति आवश्यक सामान जना कि टॉर्च लाइट मोबाइल फोन चार्जर दवाई सूखा खाए वाला सामान सफा पीबा वाला पानी नगद रुपया नागरिकता पासपोर्ट लगायत अन्य प्रमाण पत्र सब झटपट झोला में तैयारी अवस्था में राखू झटपट झोला का घर भीतर जल्दी पहुँचा वाला आ तुरंत लौ जा सके वाला स्थान में राखू
0: अपन संपत्ति के सुरक्षा करू संभव अछि त बहुमूल्य सामान आ चौपाया के उच्चगर स्थान में लौ जाओ
1: दूसरों के मदद करू बाल बालिका ज्येष्ठ नागरिक तथा अपंगता भेल व्यक्ति सब के आवश्यक सहयोग करू गर्भवती सुतकेरी आ स्तनपान करा रहल माय के लेल सुरक्षित वास के व्यवस्था करू ओ सब के लेल सकभर अलगे आ सुरक्षित चर्पी के प्रबंध करू
0: विपद के बाद होवा वाला सर्पदंश तथा पानी जन्य संक्रामक रोग के जोखिम रहला से सचेत रहू ई सूचना परिवार पड़ोसी आ जन समुदाय में जानकारी कराओ
1: बाढ़ दरवाजा तक आब जाए ऐसे पहिने तैयार रहू आ आइए से सतर्क भ जाओ
0: ई संदेश अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र ईसी मोड अंतर्गत के हाईग्रिड परियोजना द्वारा ऑस्ट्रेलियन सरकार आ सबल नेपाल के सहयोग में प्रसारण कैल गेल अछि
2: चेतावनी सुनो तुरंत निर्णय लिया सुरक्षित रहू
3: फिरता फिरता 20% समक्यास फिरता सहले पानी चाहा पानी
4: कैश फिरता लिनु भएता
5: एनसेल पैक किन्नु भएता जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरिद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिर्ता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस् एनसेल पैक किन्नु भएता शर्तहरू लागू हुनेछन् एनसेल नेपालकै लागि

0: Mania?
1: Extreme energy drink.
2: अपाङ्गता भेल व्यक्ति, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक आ बिरामी के विशेष ध्यान देबाक चाही।
3: आइ काल्हि अत्यधिक गर्मी आ गरम हवा चलो वाला समय अछि। ताई एहन अवस्था में जर एनाई, उल्टी जकाँ लगनाय, थकान लगनाय, बेसी प्यास लगनाय, धड़कन बढ़नाय, श्वास प्रश्वास में समस्या भेनाय, अत्यधिक माथ दुखेनाय, बेहोश भेनाय, मांसपेशी सब दुखेनाय, उल्टी भेनाय जेहन समस्या सब देखल जा सकत अछि।
2: गरम हवा के प्रभाव तथा लू लागे से बचाव वाला उपाय सब
3: जूस शरबत आदि प्रशस्त मात्रा में पियल जाओ।
2: दिन भर प्रशस्त पानी आ झोर वाला चीज सब सेवन कैल जाए।
3: हल्का ढीला आ सूती के कपड़ा सब लगावल जाए।
2: संभवतः ठंडा स्थान में बैसल जाए।
3: दोपहर के समय में अनावश्यक घर से बाहर नहीं जाओ।
2: बाहर जाइए पर छाता टोपी चश्मा आ पंजा प्रयोग कैल जाए।
3: खाली पेट बाहर नहीं जाओ।
2: दोपहर के समय में कड़ा शारीरिक परिश्रम नहीं कैल जाए।
3: स्वास्थ्य संबंधी कोनो प्रकार के समस्या देखल जाए त स्वास्थ्य कर्मी संग नियमित संपर्क में रह अनुरोध कैल जाए। सबल नेपाल आ समावेशी अपांग संग सप्तरीक साझेदारी तथा CBM ग्लोबल के सहयोग में संचालित अपांगता समावेशी विपद जोखिम न्यूनीकरण परियोजना द्वारा जनहित में जारी संदेश।
4: अपने साथ रहिए बोलकबा ए फिर।

0: राज विराज में आप सब प्रत्येक दिन वरिष्ठ छाला यौन रोग तथा सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर रंजू पोखरेल MBBS MD डर्माटोलॉजिस्ट द्वारा जांच इलाज भ रहल अछि।
1: जो एहन कोनो समस्या अछि त निक आ प्रभावकारी इलाज के लेल अनुभवी डॉक्टर रंजू पोखरेल के क्लिनिक सरिता मेडिकल हॉल में संपर्क करू।
0: याद रखू, सरिता मेडिकल हॉल सरकारी अस्पताल के पश्चिम गेट में।
1: फोन नंबर 9808011978।
2: हे कन्या, अहाँ के गहना बड़ा सुंदर या डिजाइनो नया कत बनेलिए?
3: ये काव्या ज्वेलर्स राज विराज में बनेलिए। ओतः आधुनिक डिजाइन का सोना चांदी का गर गहना ऑर्डर बमोजिम का गहना गारंटी के साथ बनबे छी आ नवग्रह का पत्थर सेहो भेटे छै।
4: काव्या ज्वेलर्स राजविराज सात मेन रोड अदालत के पूर्व प्रोपराइटर सोनी कुमारी साह आ सुनील साह। मोबाइल 9817440445।
5: भौजी बहुत टेंशन में छे, की भ गेल?
2: की हेते देखू ना, केन बॉक्स पलंग खरीद के आनलके जे नोट कसते कसते सब टूट गे।
5: सुनू, जय श्री हनुमान ट्रेडर्स में बहुत मजबूत बॉक्स पलंग भेटे छे, खरीद के आन लिया आ वही ठाम सब सामान भेटे छे।
2: ओ तो की सब तैयार करे छे यो?
5: बॉक्स पलंग 3 पीस आ 2 पीस दराज, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, कुर्सी, अलना, ड्रेसिंग टेबल, बाघ पंजा सोफा सेट।
3: जी हाँ, शादी विवाह आ ऑफिस के लेल संपूर्ण सामान आधुनिक मशीन से कंप्यूटर के डिजाइन अनुसार फर्नीचर तैयार कयल जाय छे।
5: 5x6 फीट के फुल बुटा के बॉक्स पलंग शादी सेट 35,000 आ 6x7 फीट के शादी सेट बॉक्स पलंग 45,000 में भ जायत। संगे मॉडल किचन खरात कार्विन के व्यवस्था छे। पलाय, फर्मेका, रेडीमेड ढोका, हैंडल, हत्था, कांटी, कब्जा, स्प्रिट, चपरा आ शीशा लगायत फर्नीचर के संपूर्ण सामान उपलब्ध है।
3: प्रोपराइटर शंभू सुथियार।
5: जय श्री हनुमान ट्रेडर्स, राजविराज 1, कंचनपुर रोड, नहर चौक, चूड़ा मिल के बगल में।
3: मोबाइल
5: 9847040070 आ 9628866270।

0: नीम करोली बाबा के जीवनी पर आधारित आ 175 करोड़ सँ बेसी के कारोबार विश्व भर में करो में सफल फिल्म हनुमान अंश शिव शंकर सिनेमा राज विराज में चल रहा है। फिल्म हनुमान अंश
1: हिंदी फिल्म हनुमान अंश सब परिवार आब देखू आ बाबा नीम करोली के जीवनी सँ प्रेरित हो फिल्म हनुमान अंश।
2: एखन अपने सब सुन रहल छी भोरकवा FM 92.8 MHz।

0: वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है।
1: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया?
0: एक कमबख्त दिल है कि गलती कर बैठता है और भुगतना हमको पड़ता है।

0: नवरत्न कुल ओइलको 2 मिनटको मालिसले राख्छ तपाईँलाई कुल, दिलाउँछ गर्मी, टाउको दुखाई, थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम। नवरत्न वर्ल्ड नम्बर 1 कुल ओइल, चिसो चिसो कुल कुल।
1: रंग बहार रंग बहार
2: बर्जर संगे उपहारे उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
1: बर्जर पेन्सले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
2: साथै 65 इन्च को स्मार्ट टीवी, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरू पनि। घर रंगाओ, खुशी बनाओ, उपहार जित्ने अवसर पाओ।
1: बर्जर पेन्सले।

0: money, yeah.
1: Extreme energy drink.
2: ये सुनो
3: की कहे छे
2: हम जाय छी तिरुपति ट्रेडर्स में वही ठाम सीजन अनुसार के सब ब्यू विजन भेटे छे खरीद लेबे आ चलि एबे
3: एकटा रोटावेटर के ऑर्डर सेहो दे देबे
2: हेते
4: तिरुपति ट्रेडर्स राज विराज
5: जी हाँ एहिठाम विभिन्न प्रकारक औद्योगिक मशीन उचित दाम में उपलब्ध है
4: चप्पल बनावे वाला मशीन
5: मुर्गा दाना बनावे वाला मशीन आ माछ उत्पादन के लेल कृषि औजार सामान सब
3: पावर ट्रेलर
5: थ्रेसर
3: रोटावेटर
5: कम्पाइंड धान आ गहूँ काटे वाला मशीन
3: रोपे वाला मशीन
5: स्प्रे मिल सेट जेनरेटर
3: कृषि औजार स्पेयर पार्ट्स
5: आ बोरिंग सामान संगे घर निर्माण आ हार्डवेयर संबंधी संपूर्ण सामान उपलब्ध है
4: तिरुपति ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स कंचनपुर रोड राजविराज 8
5: प्रोप्राइटर अशोक कुमार यादव
4: मोबाइल
5: 9807788897 आ 9847552178
6: अपांगता भेल व्यक्ति बाल बालिका ज्येष्ठ नागरिक आ बिरामी के विशेष ध्यान देबाक चाही
7: आइ काल्हि अत्यधिक गर्मी आ गरम हवा चलो वाला समय अछि ताई एहन अवस्था में जर एनाय उल्टी जका लगनाय थकान लगनाय बेसी प्यास लगनाय धड़कन बढ़नाय श्वास प्रश्वास में समस्या भेनाय अत्यधिक माथ दुखेनाय बेहोश भेनाय मांसपेशी सब दुखेनाय उल्टी भेनाय जेहन समस्या सब देखल जा सकत अछि
6: गरम हवा के प्रभाव तथा लू लागे से बचे वाला उपाय सब
7: जूस शरबत आदि प्रशस्त मात्रा में पियल जाओ
6: दिन भर प्रशस्त पानी आ झोर वाला चीज सब सेवन कैल जाए
7: हल्का ढीला आ सूती के कपड़ा सब लगावल जाए
6: संभवतः ठंडा स्थान में बैसल जाए
7: दोपहर के समय में अनावश्यक घर से बाहर नहीं जाओ
6: बाहर जाइए परत छाता टोपी चश्मा आ पंजा प्रयोग कैल जाए
7: खाली पेट बाहर नहीं जाओ
6: दोपहर के समय में कड़ा शारीरिक परिश्रम नहीं कैल जाए
7: स्वास्थ्य संबंधी कोनो प्रकार के समस्या देखल जाए स्वास्थ्य कर्मी संग नियमित संपर्क में रह अनुरोध कैल जाए
8: सबल नेपाल आ समावेशी अपांग संग सप्तरीक साझेदारी तथा CBM ग्लोबल के सहयोग में संचालित अपांगता समावेशी विपद जोखिम न्यूनीकरण परियोजना द्वारा जनहित में जारी संदेश
9: अपने साथ रहती बोरकवा।

0: राजविराज में आप सब प्रत्येक दिन वरिष्ठ छाला यौन रोग तथा सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर रंजू पोखरेल MBBS MD डर्माटोलॉजिस्ट द्वारा जांच इलाज भ रहल अछि।
1: जो एहन कोनो समस्या अछि त निक आ प्रभावकारी इलाज के लेल अनुभवी डॉक्टर रंजू पोखरेल के क्लिनिक सरिता मेडिकल हॉल में संपर्क करू।
0: याद राखू, सरिता मेडिकल हॉल सरकारी अस्पताल के पश्चिम गेट में।
1: फोन नंबर 9808011978।
2: ये दीदी, देह भारी छे आ डाँड़ पीठ से दुखाइए, कौन उपाय करबे?
3: बहुत पुरान आ अनुभवी छे डॉक्टर दिलीप कुमार सा अपने घर में सेवा दे रहल छे, चलू ना ओते जांच करा दे छी।
4: अब अपने भवन राजविराज में गजेंद्र नारायण सिंह सर माथांचल अस्पताल में कार्यरत प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप कुमार शाह टीचिंग अस्पताल काठमांडू MD
3: प्रसूति आ स्त्री रोग संबंधी संपूर्ण जांच आ इलाज करैत अछि।
4: सेवा आ सुविधा सब
3: बच्चा दानी खसनाई के ऑपरेशन सेवा, गर्भवती महिला जांच, स्त्री रोग, लिकोरिया, महीनाबारी गड़बड़ी, पीठ आ डाँड़ दुखेनाई, पेशाब जलन, मांस बढ़नाई, निसंतान दंपति के परीक्षण, IUI सेवा, वीडियो एक्सरे,
4: आधुनिक लैब के संगे फार्मेसी सेवा उपलब्ध है।
3: अवश्य सेवा के मौका देल जाए।
4: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप कुमार शाह, राजविराज, हनुमान नगर रोड, साबिक जन स्वास्थ्य ऑफिस से पूरब, छिन्नमस्ता अस्पताल के सामने दक्षिण साइड।
3: मोबाइल
4: 9816779085 आ 9817189133।
5: कतेक दर्द करे छे, ठेहुन भीने आ नस फूल जाय छे।
6: की भ गेला से?
5: ओ बुआ, नस फूल गेले आ ठेहुन के जोड़ से दर्द करे छे।
7: आप चिंता नहीं करो, चलो मंडल जी के क्लिनिक राजविराज में।
6: डॉक्टर रिधिनाथ प्रसाद मंडल से जांच करा दे छियो।
8: रो आ हमारे डाड़ का नस बड़ दुखाइया बारे, ठीक भ जतै न?
6: पूरे ठीक भ जतै।
4: जी हाँ, हाड़ जोड़नी तथा नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिधिनाथ प्रसाद मंडल MBBS MS
9: हर प्रकारक टूटल हड्डी जोड़नाए, प्लास्टर, ऑपरेशन आ नस रोग संबंधी जांच आ इलाज करैत अछि। संपर्क कैल जाए।
4: हाड़ जोड़नी तथा नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिधिनाथ प्रसाद मंडल, नर्मदा अर्थो केयर सेंटर, राजविराज, नेता चौक से दक्षिण, हीरा फार्मेसी।
9: मोबाइल 9847996749 आ 9817930096।
10: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: नीम करोली बाबा के जीवनी पर आधारित आ 175 करोड़ से बेसी के कारोबार विश्व भर में करो में सफल फिल्म हनुमान अंश शिव शंकर सिनेमा राजविराज में चल रहल अछि। फिल्म हनुमान अंश,
1: हिंदी फिल्म हनुमान अंश, सब परिवार आब देखू आ बाबा नीम करोली के जीवनी से प्रेरित हो। फिल्म हनुमान अंश।

0: बाप रे बाप, आइ काल्हि तऽ खाली हम सपनेमे हरायल रहै छियै। लोगो जे एतै अंगना घर कोइ तऽ हम थाहो न पाबै। हर वक्त ओतने सोचमे आबैत रहै छै कि की देखै छै कि की देखै छै, रंग बिरंग के बाप रे बाप। सपनेमे हम नाचैत रहै छियै, एकदम धूम मचबैत रहै छियै, ककरा कहबै। आ मनमे तऽ पेटोमे बात नुरियात रहै छै, ककरा कहबै नहि कहबै। एह मन तऽ एकदम आइकाल्हि हरखित रहै छै, रंग बिरंग के गीतो केहन फुरैत रहै छै सपनामे, देखो बाप रे बाप, दोसरे दुनियामे आइकाल्हि छियै हम।
1: गो बाबू सकरा अंगनामे पूरे सुनसान लगै छै, ककरो न देखै छियै। झोरा झंटी देखै छियै घरमे राखल छै, कतौ गेल रे झोलपट्टी वाली? ऐ झोलपट्टी वाली गो बाबू, सब घर छै खुल्ले, लोक कथा हे न छै, मुल्को झोरा

0: गया क देखै छी मुल्क झोरा राखल यऽ घर म कतौ गेल रहियै
1: ये बाजार गेल रहियै ये बाजार से एलियै ना थाक गेलियै ना अनाक जे बैठलियै ना से आँख लागि गेलै कखनी थाहे ना पाबलियै आँखो जे लागलै तखन से बाप रे हे अत्ते नीक नीक सपना देखै छी आइ काल्हि अखनियो आँख लागलै तऽ एहन नीक सपना देखै छलियै जे की कहू तकर वर्णन नहि कयल जा सकै छै
0: हे गो बाबू सो जागले जागले सपना देखऽ लागै छियै
1: आइ काल्हि तऽ बुझू दिन देखारे सपना देखै छियै सपने मे डूबल रहै छियै
0: आइ काल्हि एहन कोन खास बात छियै से अहाँके एते सपना आबै एते मे एहन नीक नीक
1: आइ काल्हि मन खुशी छै बुझलियै न ताहि दुआरे देखै छियै एहन नीक नीक सपना
0: हे कहू तऽ हरेक चीज जे छै फुसो सनक चीज होइत रहै लग पासमे हटिए जाइ छलियै तहाँ हमरा सङ्ग करैत रहियै आँ एते सामान आनलियै एको बेर नहि हमरा कहलियै जे हँ दीदी चलू बाजार कि किछो की भेल ये मन मोट तोट भए गेल
1: हे देखी मन कथी लए मोट हेतै ये अहाँ सब मन मोटेबै तऽ हेतै करबै तऽ हेतै अहाँ से हमरा कोनो अथी नहि छै टेंशन नहि छै तकर अहाँ कथीक टेंशन लै छियै अहाँ लए तऽ अहाँ छेबे करियै हम छेबे करियै आओर तेसर आदमी बीचमे के एतै के छै
0: तऽ वएह तऽ कहलहुँ बाजार गेलै हमरा कहबो नहि करलियै
1: हे दीदी की कहब टाइमे मे एवरी पैसा पठा देलकै ने विदेश सँ हमर ओ जे छै
0: ए हाँ बुझि गेलियै अहीँके दिन दुनिया ये तऽ की सब किनलियै ये
1: हे बहुते चीज किनलियै ये दीदी ये हम तऽ कहै छी ने वएह सपना देखैत रहै छी आइ काल्हि
0: की सब देखै छियै
1: देखै छियै बाप रे बा एकदम कते महिला सब छै पूरा एकदम भेला भेल छै एकदम सब गड़ा रंग बिरंग के पहिरने छियै एकदम निखास साड़ी लगने छियै एकदम गहना जेवर लटकेने छियै फैशन करने छियै पूरा एकदम सबसे टॉप लागै छै सब गड़ा हमर वर्णन करैत रहै छै आ एकदम नाचैत रहै छै झूमैत रहै छै गीत बजा देने रहै छै साउंड बॉक्स एकदम एकदम खुशियाली में रहै छियै
0: ये बुझि गेलियै ये कहाँ कोन पाबनि दिए कहै छियै न से हमरा आब दिमाग मे सेट भए गेलै
1: ये सेट भए गेल तऽ मने मन राखू बुझलियै आ अहाँ सामान सब नहि किछो किनलियै से
0: अहीं जोका छियै हमहूँ जे विदेश सँ टका ये ताहिमे अलग करि कऽ पठेतै जे एते एते अहाँके लागै छी एकर गहना कीनब साड़ी कीनब मेकअप के समान कीनब हमरा से दिन दुनिया कहिया हेतै
1: ओहि बेर देखलियै ने केहन समय भए गेलै तऽ पैसा नहि पठायल भेलै तऽ मन के बात तऽ मने मे रहि गेलै तऽ एवरी लेकिन पहिने पठा देलकै कहलकै पाबनि खातिर ई टका छुट्टे अहाँके छी अहाँके जे मन हैत से लेब पिन्हब ओढ़ब खर्चा करब
0: से देखो एकटा हमरा घरके लोग छै एकटा हमरा घरके लोग छै जे खाली पेटबे की लोटबे सोचैत रहै छै एको रत्ती ने पर पाबनि पर की पिन्हतै की ओढ़तै की लेतै ताहि सब पर तऽ कोनो ध्यान नहि छै एकटा या कतेक कमेबे करै छै ओकरा हम की कहबै खसियो बकरी जे पोसने रहिए सो बुढ़बे के बीमारी मे सठि गेलै केना करबै से कहू न की सब लेलियै ये
1: की सब मुँह सब ओते मन रहै छै एते टा के लिस्ट अखनी देखा देब न अहाँके तऽ बाप रे बाप ओते हमरा मनो न रहै छै तैयो कहि दै छी साड़ी लेलियै देखै छियै न केहन अथी वला साड़ी लेलियै
0: साड़ी
1: रहून देखा देब ये तब की कहै छै या चूड़ी ओकर सेट गहना लेलियै सब चीज लेलियै आ तब मेकअप के समान सब लेलियै अजरंग गजरंग जते है ये महिला के सब चीज लेलियै
0: गो बाबू सहे हमरा तो बुझाय छै 10-15 हजार से कम के नहीं भेल हैत हे ई सोना छी
1: हाँ ये यो बनेलिए सोना का
0: गो बाबू सो
1: नीक छै
0: हाँ ये चूड़ी कथी का छी ये
1: हाँ ये चूड़ी तो छी लाही का आ बीच में सोना का बल्ला बनेलिए
0: गो बाबू सो तब 10-15 हजार के हेतै दू

0: चीज अहाँ कीन कऽ अनलियै?
1: आब गहना गुड़ियामे तऽ कनि टका पैसा तऽ लागिये ने जाइ छै, आ ई तऽ रहिये ने जेतै सम्पत्ति, ई तऽ नहि ने टूटतै फूटतै गलतै।
0: नहि नहि, से तऽ अहाँ नीके करलियै,
1: ताहि दुआरे कहलियै जे ओ लाटमे दू चारिटा गहनो भए जायत तऽ नीके रहत, अपने ने रहत।
0: हँ ये सएह देखियौ, हम केना करबै?
1: हे अहाँ नहि लेबै, अत्ते लोग लै छै, बाप रे बा, हे बजारमे तऽ टांग राखैके जगह नहि छै, महिला सबके तत्ते भीड़ छै, सामान सब जे कीनैत रहै छै, अहाँ कहिया सामान सब कीनबै?
0: हम केना करबै, वएह तऽ एलहुँ अहाँसँ पूछै लए, हमरा ओकरा तऽ कोनो मतलबे नहि छै, हम की करबै? बुढ़बा बुढ़ियाके कहबै तऽ ओ थोड़ी देतै, कते दिन जोड़ देतै हमर सब किछु बुढ़बा बुढ़िया, आँय से कहू ने।
1: हे अहाँके घरमे तऽ सब दिना कोनो पाबनि तिहार आबै छै तऽ एकटा से एकटा समस्या देखेबे करैए, समस्या रहबे करैए, समस्या तऽ सब दिना लोकके ओहिना लागल रहै छै, तऽ की करतै लोक? पाबनि तिहार नहि मनेतै, खुशहाली नहि मनेतै?
0: केना के खुशहाली मनेबै? जो दुई चारि टका रहै छै, 200, 400, 500, 1000 रुपया राखै छै जोगा कऽ, ओहो लए कऽ चलि जाइ छै, तऽ की करबै हम से कहू ने? हमरा तऽ मनके बात मनेमे रहि जाइ छै।
1: कहै छै देखो अखन पिन्है वला छै, ओढ़ै वला छै, लोक कहै छै पिन्हले ओढ़ले काम लागै छै, जाइ छै सङ्ग, खाले पिले सङ्ग जाइ छै, तऽ की हेतै बचा कऽ कते जोगायब? अहाँके तऽ बहाना फुरबे ने करैये, हम रहितै तऽ रंग बिरंग नाटक आ बहन्ना पसारि देतिये, अपने पैसा निकालतिये टक्का।
0: ये तो हमरो कुछ उपाय सोच दिया ना, कोन नाटक करबै, कोन बहाना करबै जे जेते पैसा।
1: हे सुनू कहै छी,
0: हे अबरी दे, हमरो मन होइ छै कि पबनी मे बढ़िया से बढ़िया साड़ी पहिरतिये, खूब हेतेक चूड़ी पहिरतिये, खूब गहना जेवर से कथी कहै छै मेकअप आर करतिये, लेकिन की करबै? आ सब ओहि दिना गेल छलहुँ ने पोखरि झोलपट्टी वाली,
1: हाँ।
0: तऽ सबटा महिला सब कहै छलै समिति बनेबै,
1: हाँ।
0: सब बनेलकै, गठन करलकै ओ सब, आ सब गोरा कहैत रहै एके ठिन रहबै, एके ठिन सब गोरा पीन ओढ़ि कऽ अपन नाचबै गाबै भरि राति सब गोरा रहबै, से कहैत रहै, तऽ ओहिमे तऽ देखऽ पड़तै जे के की पिन्हना छै,
1: हाँ।
0: के कते मेकअप करना,
1: हाँ।
0: छै,
1: तऽ ओ सब हमरो भेटल छलै ये दीदी, ओ सब हमरो भेटल छलै, कहैत रहै कि एवरी कम्पिटिशन करबै महिला सबमे जे के सबसँ नीक लागै छै, के सबसँ सुन्दर भेलै अतेमे, नाचतै गाबतै सबटा फोटो सोटो घिचतै फेसबुकमे देतै सबटा।
0: हे भगवान, तऽ हम केना करबै?
1: हे हम सिखा दै छी एकटा, बुझलियै?
0: जे नीक हेतै से सिखा दियो, जैसे ई योजना फिट भए जाय।
1: हाँ, तऽ एकटा नाटक अहाँ करू, की करू अहाँ जाउ बुझलियै अंगना, अखनसँ अहाँ मुँह कान फुला लिअ बुझलियै, भनसा भात सब बंद कए दियौ, चूल्ही चौका।
0: ये मुँह कान केना फुलेबै? ये बिरनी बिनते तऽ ने फुलते मुँह कान।
1: देखो देखो बाते ने बुझे, जा बिरनी में ढेला मारि दे बना बीन लेत, देखो
0: से तो होइ
1: छै बुझबे ने करै छी,
0: तऽ केना मुँह कान फुलेबै? हम कहियो ने फुलेना छै, हमरा तऽ बुझले ने छै।
1: हे भगवान, हे मुँह में पानि राखि ले बुझलियै, बाजबे ने करब कोई बजात तऽ
0: पानि से मुँह फुलि जेतै?
1: फुलतनि तऽ, कोई बजात तऽ अहाँ बाजबे ने करब।
0: एकटा ठीक भेलै, ई बात भेलै, आओर दोसर कहू।
1: हाँ तऽ आयत ने अपने सब गोटे पूछै लए, भाईजी आयत, ओ बुढ़िया आर आयत, कहत की भेलै, तऽ कहबै हम अहाँ बाजबे ने करब, आ बहुते खुशामत करत तब कहब हमर मांग पूरा करू, तऽ कहतै कोन मांग छै, तब ई बात सब अहाँ खोलब राजके बात, जे हमरा पाबनि छियै तऽ हम साड़ी लेबै, चप्पल लेबै, गहना लेबै, चूड़ी सिन्दूर लेबै, से सब अहाँ जे सब लै छै होइ छै,
0: हाँ।
1: से सब अहाँ खोलि देब अपन।
0: नीके गप कहलियै ये कनिया, बाप रे बा, आइ जाइ छियै, अगर नहि फिट भेलै तब केना करबै?
1: आ कहबै ई सब जे हमर मांग नहि पूरा करबै तऽ हम नहिरा चलि जायब।
0: ए ठीके कहलियै,
1: बुझलियै, ओतबे बातमे तऽ सीधा भए जेतै, तुरत पैसा निकालत।
0: ठीक कहलिए, ठीक कहलिए, लिए तऽ हेतै जाइ छै।
1: कहै छै लोक, देख महिला लोक अखन पहिरै बला छै, पिन्है ओढ़ै बला छै, तऽ कहै छै निपने पोछने अंगना घर आ पिन्ने ओढ़ने कनिया बर, अखन नहि पहिरतै ओढ़तै तऽ कहिया पहिरतै बूढ़ माँ।
0: बाप रे, ये अहाँके चप्पल कते नीक यऽ ये।
1: हे नीक रहतै ने, वएह हमर ओकर कमाल छियै विदेशिया के।
0: ए फोटो खींच कऽ पठेलिए तब किन लिए पसंद करि कऽ।
1: तब दोकानमे जे सबसँ नीक छलै से कहलिए निकालू।
0: हे झोलपट्टी वाली, अहींके नीकसँ धारना यऽ विदेश, भगवान करो अहिना सब दिन रहो। सबके नहि धारै छै, ककरो ककरो तऽ एहन गति होइ छै ने जे हक हकै लोरकानी।
1: सएह तऽ हे, नजर गुजर नहि लगाबू के नीक हमर विदेशिया कमबै छी।
0: एको रति ने नजर लगबै छी, कते कतौ देखै छै कर्जा उठा कऽ जाइ छै, कर्जे मे डूबल रहै छै। घरोक लोग तऽ चिंता करै छै, ओतऽ ओहो चिंता करै छै।
1: हाँ से तऽ हमर जे ओ छै ने से एना वाला वाला काम नहि करै छै, एकदम कहने छियै अपन काम करै छियै तऽ सीधा सपट एकदम ईमानदारी पूर्वक काम करू, तऽ ओहिने अपन सूद नेत सँ काम करै छै, भए गेलै काम सँ मतलब राखै छै।
0: नीक करना छै, नीक करना छै, भगवान करो सब दिन अहिना हो, अहिना नीक सँ रहो।
1: इएह कहलहुँ, आशीर्वाद अहिना दैत रहियौ जे सब दिन हमरा आरके अहिना हँसी खुशी मनबैत रही, खुशियाली घर में आबैत रहो।
0: नहीं जे हमरा देते ना इनको तो हम नहीं जाबो पावन महा ओय महिला सब में।
1: हे बाप रे बाप, नहीं देता एहन छ, नहीं देता, नहीं देता, हम छियन या हम अहा के देब।
0: हाँ तो हेते जाय छी हम अंगना।
1: देखो पावन केना के छोड़ देते, बरस दिन का पावन एहन महिला सब एकदम सबटा।
0: हे सुनू न, कहै छी
1: हाँ
0: एको बेर से हमरा ऊ जे हल्ला करत ना अहा नहीं आब हमरा अंगना, नहीं तो कहते वे सिखा दल के सब कुछो।
1: आय देखो हाँ से तो बुढ़िया तो कहते रहे छी, हमर नामे सुन के ओकरा जलन हुआ हाँ, लागे छी।
0: हेते लिए हम जाय छी।
1: हेते जो किछो हैत ना अहा के नाटक नहीं सफल हैत तब अहा हमरा कहब।
0: हेते जाय छी, जहिना झोलपट्टी वाली कहल के ना से है हमरा करा पड़ते। एकरा और के जे छे ना सब दिन कहियो ने मन में होत रहे छे जे पर पावन येले त एकटा निखा नुआ किन के दे छिए, एकटा किछो किन के आन दे छिए, कहियो ने सेहनता लगे छे। सब दिन मार धूस के काम कर आ जे बने छो से खो, बाद बाकी भए गेल, एहिना कर के जिंदगी बीतल जाय छे। एकटा जे छे कहै छै कतौ चलियो जाय लऽ नौकरी चाकरी करै लऽ सेहो ने जाइ छै, कहियो 200 कमेतै, कहियो 500 कमेतै, तहिना हेतै। जाइ छियै आइ जहिना कहलकै तहिना करबै, भरि मुँह पानि लए लेबै आ कुर्सी पर बैठ रहबै।
2: सीताराम सीताराम, कोना छै रे उजकुनमा, उजकुनमा रौ, आरो तोरी भलाके बजबे नहि करै छी, बुढ़िया कोना गेलै, ए कोना छै
1: आया छियै, कथी कहै छौ उजकुनमा के,
2: कथी करै छै ओहिठिना बैठ कऽ,
1: उजकुनमा कहाँ छै से
2: कतऽ गेल,
1: गेल हेतै बुलनवा बुलै ल,
2: तू की करै छ बैठ कऽ।
1: हम माछी मारै छी, कथी करबै।
2: माछी मारै छै, खाइयो ताइयो के बेर भेलै, राति पड़ल जाइ छी।
1: क्या न गेलियै आइ परदेश वाली के घर सँ निकलबे न करै छै, की करै छै नहि करै छै, आ भनसा भात सब बन कए देने छै, आन दिना सवेर सकाल क्या लै छलै, आइ कते पहर राति हेतै, की हेतै नहि हेतै,
2: की भेलै परदेश वाली के।
1: क्या नहि गेलियै, हम नहि गेलियै पूछै लऽ की भेलौ, कहलियै अपने निकलतै बाहर, अपने काम धंधा भनसा भात करतै, तै के अथीमे प्यारा मचियै।
2: आरो तऽ साँझ पहर बीतल जाइ छै, आइ अखन तक भनसा नहि पजारलकै, चूल्हा नहि पजारलकै, कखनी भानस हेतै।
1: क्या नहि गेलियै कि भार डोर एतै, तै खातिर बैठल छै सब गड़ा घर मे।
2: जा न देखियो ह, तब हम कोना कोना से एलिए, माल जाल के खिया के पिया के सब के घर कर दिलिए।
1: ल लै जाइ छिए उठा देबै परदेशवालीके, कि करै छै सिरजल तिरजल देखै छै कि करै छै क्या नहि गेलिए।
2: हँ हँ सएह हेतै कि दोसर कोन काम छै। भरि दिन रहै छै सभामे मीटिङ्गमे आ साँझ पड़ै छै तऽ जाइ छै सिरजल देखै लए, जखनी मन हेतै तखनी भनसा करतै। ई कोनो अथिए नहि छै अङ्गना घरके, नियमे नहि छै।
1: हँ भरि दिन रहै छै अहरे महरे साँझके कुटिया धान सएह छियै। जाइ छियै हमर बात कहियो माल लकै यो आ की मानतै, आ तैयो तऽ रह पड़ै छै एके ठाम, छुटै वाला तऽ नहि छियै जे छुटि जेबै फुटि जेबै। मारे परदेश वाली, बाप रे बाप, साँझ साँझ हार भेल जाइ छै आ भनसा कखन आइ चढ़तै गौ बाबू सब, सब गोटा भूखले न रहि जाइए। आ की भेलै एकरा जे नहि उठै छै घर सँ निकलै छै। मारे तोरे कहै छिया हे, देख ताकै छै टुकुर टुकुर आ बाजै नहि छै। मार बाजा न हे की भेलै, बाज भ तब न बुझबै जे की भेलो, मन तन कोना लागै छ, कहुना करै छ कि किछो भेलो, कि रुसल फुसल छ। हम तऽ किछो न कहलिय, आय आय तऽ हमरा सँ बुढ़बो सँ नहि कोनो झगड़ा दन भेलै, कथी ल रुसल छ। मारे बाजै के न छ हे, खाली हुहुकारी मारै छ। मार बाजा न हे, मुँह खोल न हे, की भेला हे गौ बाबू सब, ई कथी ल हुहुकारी मारै छै गौ। मारे बोली कहाँ फुटै छ हे, हे गौ गौ बाबू है परदेश वाली है की भेला है, बाजा न हे देखी गौ बाबू सब, हे गौ बाबू की भए गेलै गौ, हे गौ आब कोन उपाय करबै गौ, खाली हुंकारी मारै छै मुड़ी डोलबै छै गौ बाबू सब। हे गौ बाबू एकेटा परदेश वाली छै, भनसा भात करि कऽ खुआबै यऽ कहुना, आ से की भए गेलै, आइ मुड़िए टा डोलबै छै, हुहुकारी मारै छै आ किछो न बाजै छै, हो भगवान की भए गेलै हो। बाजा न हे परदेश वाली, हे गौ बा आब कोन उपाय करबै गौ, की भए गेलै गौ, की लागि गेलै एकरा गौ, आब ककरा हम बोलेबै गौ बाबू सब। हँ बुढ़वा आ जुलुम भए गेल, आब न दरबर दए कऽ झटसिना। हे गौ बाबू गौ परदेश बारी तऽ हुहुकारी मारै छै,
2: कथी भेल ढकल ढकल देलका।
1: हे गौ किछो तऽ बाजबे न करै छै, बोलिए न फुटै छै गौ बाबू।
2: तोरा कुछो कहलका?
1: नै गौ किछो न कहलकै हमरा।
2: की भेलै?
1: कहतिए तऽ बाजतिए न किछो,
2: बाजबे न करै छै,
1: बाजबे न करै छै।
2: आरो तोरीके की भेलै कि?
1: खाली हो हो करै छै।
2: हे गौ बा किछो लागि तागि न गेलै?
1: हे गौ हमरो बुझाइ छै भरसक किछो लागि तागि गेलै, छापि तापि देलकै भरसक।
2: क्या न गेलिए?
1: आब ककरो बोलब न हाथ देतै गौ बाबू, हमरा तऽ जीव हाथ उड़ै छै।
2: रह रह रह स्थिर रह,
1: कोन उपाय करबै।
2: ए परदेश वाली की भेला? आरो तोरी भला कर, टुकुर टुकुर टा करै छै आ हूं हूं करै छै, की भेला? बाजा न,
1: बाजा न हे परदेश वाली।
2: अरे उचकुन मारो, उचकुन मार, कोना गेलही रे?
1: घर मे नहि छै, ओहो रहै छै बुलनमा, बुलते नहि देखै छ।
2: आब हम ककरा लग जाइए की कहिए, आब सोझे हूँ कारी मारे छे की भेले नहीं भेले केना बुझबे
1: तू तो नहीं किछो कहला झगड़ा दन नहीं कहला
2: हम अपना रहे छे भर दिन बाद में झगड़ा दन करी छे
1: हमरो से आज झगड़ा तगड़ा कहां के लिए ये किछो आज तो मिलाने छले
2: अरे तोरी भला के हो भगवान आब केना करिए आब हम ककरा कहिए आय साँझ के ककरा देबे हम ताके ले आब
1: जाना धामी लो
2: अरे तोरी के ला ला ला हम जाय छे
1: माथा हाथ देते गो बाबू किछो लाग गेले भर स
2: कुछो ने चिंता ने कर हम आबे छे दौड़ ले धामी लो
0: हमरा नहीं भेल छे कुछो
1: हे गो बाबू गो हे गो हैया बाज ले ए बुढ़वा ए परदेश वाली हेगो बाबू गो बाबू थर थर कापै छे तखन स ए परदेश वाली के की भए गेले
0: केना केना करे छे दुनू टा अखनी हम नहीं बाजतिए झोलपट्टी वाली कहना रे ने गो बाबू झोलपट्टी वाली के नाम कथी ले लिए कहना रे नहीं बाजे ल आ नहीं जब बाजतिए तो धामी ले जातिए धामी आबिते तो हमरा मारतिए की करतिए धामी तो कहाँ दिन बहुते मारे छे माथा हाथ दैत रहे छे तो तै दुआरे हम बाजा गेले हमरा आब केना करबे
1: हे परदेश वाली की भए गेल छल नहीं बाजे छल कनियो कला नहीं बाजत त हमरा के भर सक जी हाथ उड़ गेल रे ऊपरे ले चल जातिए गो बाबू
0: हमरा कुछो न भेल छे
1: त भनसा भात किया बन के न छ
0: बात हम रुसल छी
1: अगो बाबू स मर कथी ल रुसल छै
0: ओइ न ल रुसल छै उ यते तन ओकरा कहबा हिनका कथी कहबा ई हम रुसल छै ती कोनो हमरा पूरा करथिन से हिनका नै कहबै न उ यते न तब कहबै तब हम महिना रुसले रहबै
1: कह बाबू स बुझ कोन मास लड़ाई मार केल हसे
0: लड़ाई नै कर ले लेकिन आब करबै
1: ए भगवान की सोचे छे मन मन नहीं सोचत रहे छे थाहे न पावे छे जान दयाबो भंसा भात करियो आई उपासे राख देबो हमरा आर का
0: करबे भंसा ई जात न दुवार प हमरा कहियते उता न अखनी नहीं करबे
1: ले के सकत एकर नाटक बाज म
0: जात छे दुवार न तना तना ई बुढ़वा बुढ़िया नाटक कर लगे छे न जे मजबूर भए के हमरा बाजे पड़े छे अपने
1: जी हाथ सब हमरा दे लेगो
0: अति शरत रखन रहिए पूरा भए जतिए से ई बुढ़वा बुढ़िया कना कना करैत रहे छे आ जाबे यते ने सब कुछो कहते ने तब हमने भंसा करबे
3: बेस्त श्रोता मित्र आजुक नुनमर्चा के निर्धारित समय ठाम समाप्त भ गेल आजुक कार्यक्रम से हम जीवत
2: आ हम जिलेबिया
1: हम फूल कुमरी
4: आ हम मुंचन प्रिया
5: आ हम सरिता विदा चाहे छी नमस्कार शुभ संध्या
6: संपूर्ण सुविधा से संपन्न यूनिक अस्पताल रायपुर रूपनी आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज
3: अब बीपी कोयराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरन वीर अस्पताल काठमांडू एम्स अस्पताल दिल्ली के दक्ष एवं अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर सब द्वारा हर प्रकारक रोग के जांच आ इलाज करैत अछि
6: एहिठाम महिला स्त्री एवं प्रसूति पुरुष आ बाल रोग संबंधी जांच आ इलाज करैत अछि
0: सेवा आ सुविधा सब
3: 24 घंटा इमरजेंसी आ एम्बुलेंस सेवा ओपीडी मेडिसिन सेवा
0: ऑपरेशन सेवा चर्म रोग हार्ट जर्नी डायबिटीज
3: होल बॉडी जांच सिटी स्कैन आईसीयू एनआईसीयू ओटी
6: डिजिटल एक्सरे एसी नॉन एसी कैबिन के सुविधा है
0: संपर्क कर जाए
3: यूनिक अस्पताल रुपनी रायपुर आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज 6 गणेश मंदिर नजदीक
0: फोन
3: 031-530-7076
0: मोबाइल
3: 9815-60800 आ एम्बुलेंस के नंबर 9815-56205 9815-56202
7: फिरता फिरता 20% समक्यास फिरता जैले पनी चाहा पनी
8: कैश फिरता लिनु भएता
9: एनसेल पैक किन्नु भएता जैले पनी जहाँ पनी पैक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% समक्यास फिरता एनसेल एप मा क्लेम गर्नुहोस् एनसेल पैक किन्नु भएता सर्थहरू लागू हुनेछन् एनसेल नेपालकै लागि

0: नवरत्नको रोयलको दुई मिनटको मालिसले राख्छ तपाईँलाई कुल, दिलाउँछ गर्मी, टाउको दुखाइ, थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम। नवरत्न वर्ल्ड नम्बर वन कुल ओइल, चिसो चिसो कुल कुल।
1: एकटा खुसीको खबर छ।
2: कथि छ?
1: विदेश से छुट्टी में आयल आदमी सब के श्रम स्वीकृति के काम अब राज विराज में चालू भ गेल छी। आंख के फोटो आ फिंगरप्रिंट के लेल कतौ बाहर नहीं जा पड़तौ।
3: जी हाँ, अली कम्युनिकेशन
4: एठम विदेश जवाक लेल श्रम स्वीकृति के काम, देश विदेश के लेल हवाई टिकट बुकिंग आ टिकट के डेट चेंज, भारत के लेल रेलवे टिकट बुकिंग,
3: विदेश सेवा के लेल ओरिएंटेशन कक्षा, मेडिकल जांच, कतार आ दुबई के लेल विजिट वीजा एवं विदेश में चिट्ठी पत्र पठेबाक लेल कुरियर सेवा उपलब्ध अछि।
4: नया पासपोर्ट बनेबाक लेल ऑनलाइन केनाई आ विदेश जाय वाला के लेल राष्ट्रीय परिचय पत्र के फ्री ऑनलाइन फॉर्म भरनाई के संगे हरेक कंपनी के मोबाइल थोक दर में बिक्री आ मरम्मत करैत अछि।
3: संपर्क
4: अली कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल्स, चतुर्भुज मार्केट, मेन रोड, लोहार गली, राजविराज 4, सप्तरी।
3: फोन
4: 0315325575।
3: मोबाइल
4: 9801502475।
5: रंग बहार रंग बहार
6: बर्जर संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
5: बर्जर पेंट ले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्रा मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
6: साथै 65 इंच को स्मार्ट टीवी, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहार पनि।
5: घर रंगाओ, खुशी बनाओ, उपहार जित्ने अवसर पाओ। बर्जर पेंट्स।

0: बाढ़ के मौसम में सतर्क रहू आ सुरक्षित रहू। बाढ़ कोनो बखत आब सकत अछि, ताय प्रतिकार के लेल तैयार रहू।
1: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग DHM द्वारा नेपाल के विभिन्न भाग में औसत से बेसी वर्षा होबाक पूर्वानुमान कयल गेल अछि, जै कारण बाढ़ आ कटान के जोखिम बढ़ सकत अछि।
0: सतर्क रह कर आवश्यक जानकारी प्राप्त करू आ स्थानीय सूचना सब के पालन करू। अहाँ के सुरक्षा अही के जानकारी पर निर्भर अछि।
1: बाढ़ के जोखिम भेला पर ई उपाय सब अपनावल जाओ।
0: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, वडा कार्यालय, स्थानीय सरकार तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण संबंधी जिम्मेवार व्यक्ति सब प्राप्त बाढ़ संबंधी जानकारी आ चेतावनी के ध्यान पूर्वक सुनू आ तही अनुसार उपयुक्त निर्णय लिय।
1: नजदीक रहल नदी खोला में पानिक बहाव के नियमित रूप में अनुगमन करू। नदी किनार या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बसोबास कर रहल छी त सुरक्षित आश्रय स्थल या उच्चगर स्थान में रहू आ सुरक्षित रूप से निकले वाला रास्ता बाट खोजू।
0: सूचना द्वारा चेतावनी जारी भेल त देर नहीं कर तुरंत सुरक्षित स्थान में जेबाक लेल तैयार रहू।
1: अति आवश्यक सामान जना कि टॉर्च लाइट, मोबाइल फोन, चार्जर, दवाई, सूखा खाय वाला सामान, सफा पीबा वाला पानी, नगद रुपया, नागरिकता, पासपोर्ट लगायत अन्य प्रमाण पत्र सब झटपट झोला में तैयारी अवस्था में राखू। झटपट झोला का घर भीतर जल्दी पहुँचा वाला आ तुरंत लौ जा सके वाला स्थान में राखू।
0: अपन संपत्ति के सुरक्षा करू, संभव अछि त बहुमूल्य सामान आ चौपाया के उच्चगर स्थान में लौ जाओ।
1: दोसरों के मदद करू, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपंगता भेल व्यक्ति सब के आवश्यक सहयोग करू। गर्भवती, सुतकेरी आ स्तनपान करा रहल माई के लेल सुरक्षित वास के व्यवस्था करू। ओ सब के लेल सकभर अलगे आ सुरक्षित चर्पी के प्रबंध करू।
0: विपद के बाद होवा वाला सर्पदंश तथा पानी जन्य संक्रामक रोग के जोखिम रहला सँ सचेत रहू। ई सूचना परिवार, पड़ोसी आ जन समुदाय में जानकारी कराओ।
1: बाढ़ दरवाजा तक आबि जाय ऐसे पहिने तैयार रहू आ आइए से सतर्क भ जाओ।
0: ई संदेश अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र ईसी मोड अंतर्गत के हाईग्रिड परियोजना द्वारा ऑस्ट्रेलियन सरकार आ सबल नेपाल के सहयोग में प्रसारण कयल गेल अछि।
2: चेतावनी सुनू, तुरंत निर्णय लिया आ सुरक्षित रहू।

0: नवरत्न कुल ओइलको दुई मिनटको मालिसले राख्छ तपाईँलाई कुल, दिलाउँछ गर्मी, टाउको दुखाइ, थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम। नवरत्न वर्ल्ड नम्बर वन कुल ओइल, चिसो चिसो कुल कुल।
1: अपाङ्गता भेल व्यक्ति, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक आ बिरामी के विशेष ध्यान देबाक चाही।
2: आइ काल्हि अत्यधिक गर्मी आ गरम हवा चलो वाला समय अछि, ताइ एहन अवस्था में जर एनाय, उल्टी जका लगनाय, थकान लगनाय, बेसी प्यास लगनाय, धड़कन बढ़नाय, श्वास प्रश्वास में समस्या भेनाय, अत्यधिक माथ दुखेनाय, बेहोश भेनाय, मांसपेशी सब दुखेनाय, उल्टी भेनाय जेहन समस्या सब देखल जा सकत अछि।
1: गरम हवा के प्रभाव तथा लू लाग से बचे वाला उपाय सब,
2: जूस शरबत आदि प्रशस्त मात्रा में पियल जाओ,
1: दिन भर प्रशस्त पानी आ झोर वाला चीज सब सेवन कैल जाए,
2: हल्का ढीला आ सूती के कपड़ा सब लगावल जाए,
1: संभवतः ठंडा स्थान में बैसल जाए,
2: दोपहर के समय में अनावश्यक घर से बाहर नहीं जाओ,
1: बाहर जाइए पर छाता टोपी चश्मा आ पंजा प्रयोग कैल जाए,
2: खाली पेट बाहर नहीं जाओ,
1: दोपहर के समय में कड़ा शारीरिक परिश्रम नहीं कैल जाए,
2: स्वास्थ्य संबंधी कोनो प्रकार के समस्या देखल जायत अछि तऽ स्वास्थ्य कर्मी संग नियमित संपर्क में रह अनुरोध कैल जायत अछि। सबल नेपाल आ समावेशी अपांग संग सप्तरीक साझेदारी तथा CBM ग्लोबल के सहयोग में संचालित अपांगता समावेशी विपद जोखिम न्यूनीकरण परियोजना द्वारा जनहित में जारी संदेश।
3: एखन अपने सब सुन रहल छी भोरकवा FM 92.8 MHz।

0: 500 प्याकेट भित्र रहेका कुपनहरू हल्का प्लस रमाइलोलाई मिलाउनुहोस् र प्राप्त गर्नुहोस् एक प्याकेट मामा चाउचाउ सित्तैमा।
1: मामासँग हल्का रमाइलो।
2: सम्पूर्ण सुविधा सह सम्पन्न युनिक अस्पताल रायपुर रुपनी आ युनिक सिटी अस्पताल राजविराज।
3: अब बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान वीर अस्पताल काठमांडू एम्स अस्पताल दिल्ली के दक्ष एवं अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर सब द्वारा हर प्रकारक रोग के जांच आ इलाज करैत अछि।
2: एहिठाम महिला स्त्री एवं प्रसूति पुरुष आ बाल रोग संबंधी जांच आ इलाज करैत अछि।
4: सेवा आ सुविधा सब
3: 24 घंटा इमरजेंसी आ एम्बुलेंस सेवा ओपीडी मेडिसिन सेवा
4: ऑपरेशन सेवा चर्म रोग हार्ट जर्नी डायबिटीज
3: होल बॉडी जांच सीटी स्कैन आईसीयू एनआईसीयू ओटी
2: डिजिटल एक्सरे एसी नॉन एसी कैबिन के सुविधा है।
4: संपर्क कर जाए
3: यूनिक अस्पताल रुपनी रायपुर आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज 6 गणेश मंदिर नजदीक।
4: फोन
3: 031-530-7076
4: मोबाइल
3: 9805-60800 आ एम्बुलेंस के नंबर 9805-56205 9805-56202।
5: फिरता फिरता 20% समकेस फिरता जहिले पनि जहाँ पनि
6: क्याश फिरता लिनु भए त
7: एनसेल प्याक किन्नु भए त जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिरता एनसेल एप मा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल प्याक किन्नु भए त शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

शताब्दीसम्म ढुक्क हुनुहोस् बजरङ स्टिल, शक्तिको नयाँ अवतार।

0: Mania.
1: Extreme energy drink.
2: अखंड अपने साथ जुड़ रही थी बोरकबा एफएम।
3: हमारे इस चैनल मिथिला जंक्शन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त।

0: राजविराज में आप सब प्रत्येक दिन वरिष्ठ छाला यौन रोग तथा सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर रंजू पोखरेल MBBS MD डर्माटोलॉजिस्ट द्वारा जांच इलाज भ रहल अछि।
1: जो एहन कोनो समस्या अछि तो निक आ प्रभावकारी इलाज के लेल अनुभवी डॉक्टर रंजू पोखरेल के क्लिनिक सरिता मेडिकल हॉल में संपर्क करू।
0: याद राखू, सरिता मेडिकल हॉल सरकारी अस्पताल के पश्चिम गेट में।
1: फोन नंबर 9890811978।
2: सम्पूर्ण सुविधा से सम्पन्न यूनिक अस्पताल रायपुर रूपनी आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज।
3: अब बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरन, वीर अस्पताल काठमांडू, एम्स अस्पताल दिल्ली के दक्ष एवं अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर सब द्वारा हर प्रकारक रोग के जांच आ इलाज करते
2: एठाम महिला स्त्री एवं प्रसूति पुरुष आ बाल रोग संबंधी जांच आ इलाज करते
4: सेवा आ सुविधा सब
3: 24 घंटा इमरजेंसी आ एम्बुलेंस सेवा OPD मेडिसिन सेवा
4: ऑपरेशन सेवा चर्म रोग हार्ट जर्नी डायबिटीज
3: होल बॉडी जांच CT स्कैन ICU NICU OT
2: डिजिटल एक्सरे AC नॉन AC कैबिन के सुविधा है।
4: संपर्क कैल जाए
3: यूनिक अस्पताल रूपनी रायपुर आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज 6 गणेश मंदिर नजदीक।
4: फोन
3: 031-530-7076।
4: मोबाइल
3: 9805-60800 आ एम्बुलेंस के नंबर 9805-56205 9805-56202।
5: फिरता फिरता 20% समकेश फिरता सहेले पनी चाहा पनी
6: कैश फिरता लिनु भएता
7: एनसेल पैक किन्नु भएता जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिर्ता एनसेल एप मा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल पैक किन्नु भएता शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

0: नीम करोली बाबा के जीवनी पर आधारित आ 175 करोड़ सँ बेसी के कारोबार विश्व भरि मे करो मे सफल फिल्म हनुमान अंश शिव शंकर सिनेमा राजविराज मे चल रहल अछि। फिल्म हनुमान अंश,
1: हिंदी फिल्म हनुमान अंश, सब परिवार आबि देखू आ बाबा नीम करोली के जीवनी सँ प्रेरित हो फिल्म हनुमान अंश।
0: एखन भोरक FM में रात के 8 बजल।

0: भौजी बहुत टेंशन में छे, की भ गेल?
1: की हेते देखू ना, केन बॉक्स पलंग खरीद के आनलक जे नोट कसते कसते सब टूट गेल।
0: सुनू, जय श्री हनुमान ट्रेडर्स में बहुत मजबूत बॉक्स पलंग भेटे छे, खरीद के आन लिया आ वही ठाम सब सामान भेटे छे।
1: ओतो की सब तैयार करे छे यो?
0: बॉक्स पलंग, थ्री पीस आ टू पीस दराज, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, कुर्सी, अलना, ड्रेसिंग टेबल, बाघ पंजा सोफा सेट।
2: जी हाँ, शादी विवाह आ ऑफिस के लेल संपूर्ण सामान आधुनिक मशीन से कंप्यूटर के डिजाइन अनुसार फर्नीचर तैयार कैल जाए छे।
0: 5x6 फीट के फुल बुटा के बॉक्स पलंग शादी सेट 35,000 आ 6x7 फीट के शादी सेट बॉक्स पलंग 45,000 में भ जाए। संगे मॉडल किचन खरात कार्विन के व्यवस्था छे, पलाई फॉर्मेका रेडीमेड ढोका हैंडल हत्था कांटी कब्जा स्प्रिट चपरा आ शीशा लगात फर्नीचर के संपूर्ण सामान उपलब्ध।
2: प्रोपराइटर शंभु सुथियार।
0: जय श्री हनुमान ट्रेडर्स, राजविराज 1 कंचनपुर रोड नहर चौक चूड़ा मिल के बगल में।
2: मोबाइल
0: 9807040070 आ 9862866270।
3: ये दीदी देह भारी छे आ डाँर पीठ से दुखाइए, कौन उपाय करबे?
1: बहुत पुरान आ अनुभवी छे डॉक्टर दिलीप कुमार सा अपने घर में सेवा दे रहल छे, चलू ना ओते जांच करा दे छी।
0: अब अपने भवन राजविराज में गजेंद्र नारायण सिंह सर माथांचल अस्पताल में कार्यरत प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप कुमार शाह, टीचिंग अस्पताल काठमांडू MD।
2: प्रसूति आ स्त्री रोग संबंधी संपूर्ण जांच आ इलाज करैत अछि।
0: सेवा आ सुविधा सब
2: बच्चा दानी खसनाई के ऑपरेशन सेवा,
1: गर्भवती महिला जांच, स्त्री रोग, लिकोरिया, महीनाबारी गड़बड़ी, पीठ आ डाँर दुखेनाई, पेशाब जलन, मांस बढ़नाई, निसंतान दंपति के परीक्षण, IUI सेवा, वीडियो एक्सरे,
0: आधुनिक लैब के संगे फार्मेसी सेवा उपलब्ध।
1: अवश्य सेवा के मौका देल जाए।
0: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप कुमार शाह, राजविराज हनुमान नगर रोड साबिक जन स्वास्थ्य ऑफिस से पूरब छिन्नमस्ता अस्पताल के सामने दक्षिण साइड।
1: मोबाइल
0: 9861 77985 आ 9817 89133।

0: sip on your extreme energy drink.
1: अपने सबक संग भोरुकवा FM 92.8 MHz।

0: এখন ভৰকবা এফএম ৰাইতকে ন বাজল राज विराज में आप सब प्रत्येक दिन वरिष्ठ छाला यौन रोग तथा सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर रंजू पोखरेल MBBS MD डर्माटोलॉजिस्ट द्वारा जांच इलाज भ रहल है।
1: जो एहन कोनो समस्या है त निक आ प्रभावकारी इलाज के लेल अनुभवी डॉक्टर रंजू पोखरेल के क्लिनिक सरिता मेडिकल हॉल में संपर्क करू।
0: याद रखू, सरिता मेडिकल हॉल सरकारी अस्पताल के पश्चिम गेट में।
1: फोन नंबर 9808 11

0: नीम करोली बाबा के जीवनी पर आधारित आ 175 करोड़ से बेसी के कारोबार विश्व भर में करो में सफल फिल्म हनुमान अंश शिव शंकर सिनेमा राज विराज में चल रहल है। फिल्म हनुमान अंश
1: हिंदी फिल्म हनुमान अंश सब परिवार आब देखू आ बाबा नीम करोली के जीवनी से प्रेरित हो फिल्म हनुमान अंश।

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।